0: कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा की।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री तकाइची ने अलकायदा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में उनके परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा है। आयोग ने इस संबंध में दोनों गुटों के दावों और प्रतिदावों पर ममता बनर्जी और पार्टी नेता रणब्रत बनर्जी को अलग अलग पत्र लिखे हैं। दोनों पक्षों को सोमवार शाम 5:30 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। इस प्रकार के विवाद में चुनाव चिन्ह, आरक्षण और आवंटन आदेश द्वारा संचालित होते हैं, जिसके अंतर्गत आयोग निर्णय लेने से पहले प्रतिद्वंद्वी दावों, सहायक दस्तावेजों और विवाद से जुड़े गुटों की दलीलों की जांच करता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नव निर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नव निर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में उभरती डिजिटल पहल शामिल है। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला में वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी। विचार विमर्श से केंद्र राज्य सहयोग को सुदृढ़ करने और 2047

तक विकसित भारत बनाने की परिकल्पना के अनुरूप बुनियादी सुविधाएं, सार्वजनिक सेवाओं और समावेशी ग्रामीण विकास प्रदान करने के लिए सशक्त बनाने का मजबूत ढांचा विकसित करने में सहायता मिलने की उम्मीद है। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई अपने पिता और पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में सुरक्षा कारणों से शामिल नहीं होंगे। भारत में ईरान के प्रतिनिधि आयतुल्ला हकीम इलाही ने बताया कि धमकियों और निगरानी जोखिमों के कारण मुज्तबा खामनेई का सार्वजनिक रूप से सामने आना सुरक्षित नहीं है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम 4 से 9 जुलाई तक ईरान और इराक में होगा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि समारोह में दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के मैचों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15 से 27 जुलाई तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 जुलाई से गॉल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा, वहीं दूसरा टेस्ट 23 जुलाई से कोलंबो में होगा। ये श्रृंखला आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। स्पेन और पुर्तगाल फीफा फुटबॉल विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बनाई। आज अंतिम 32 के मुकाबले में पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से हरा दिया। इससे पहले स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अंतराल के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम चित्रलोक में। आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। आइए सुनते हैं जीरो फिल्म का ये गाना, अभय जोधपुरकर का गाया हुआ, इरशाद कामिल के बोल हैं और अजय अतुल का संगीत।

चित्रलोक कार्यक्रम में अब सुनिए अमिताभ बच्चन और फरहान अख्तर का गाया हुआ वजीर फिल्म का ये गाना। गुरप्रीत सैनी और दीपक रमोला ने इस फिल्म के गाने लिखे हैं और रोचक कोहली का संगीत है।

सबसे भारी यारी जिंदगी से भी प्यारी। अब चित्रलोक कार्यक्रम का ये गाना जसलीन रॉयल की आवाज़ में डियर जिंदगी फिल्म से कौसर मुनीम ने लिखा है और अमित त्रिवेदी ने संगीत तैयार किया है।

जिंदगी से प्यार है, गीतों में करार है, सुबह भीनी हो जाए शाम खुलकर मुस्कुराए, इन गीतों के साथ ये कहती है माइक से ऐप तक खींची दोस्ती की डोर। मगर वक्त पर कहाँ चलता है किसी का जोर, ऐसे ये डोर खींचती रहे, एक दूसरे को सुनने सुनाने का एहसास जगा रहे। लव यू जिंदगी, तमाम पलों के साथ शुक्रिया कहते रहे हम और आप। अब दीजिए राजुल को इजाज़त, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओपी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओपी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता। आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ

0: गए।
1: राजकुमार यानी कुलभूषण पंडित। राजकुमार फिल्मों में आने से पहले मुंबई पुलिस में इंस्पेक्टर थे। उस जमाने में ये ओहदा अपनी आन बान के साथ सुसज्जित करने के बाद उसी चाल से वो फिल्म इंडस्ट्री में आए। अपनी अनोखी अदाकारी और खास शैली के डायलॉग डिलीवरी से अपना एक मुकाम बनाया और उसे जिस बुलंदी पर पहुंचाया उसे छुपाना फिर किसी और की बस की बात नहीं रही। शुरुआत तो कोई धमाकेदार नहीं हुई, मगर रंगीली में उन्हें पहला मेजर ब्रेक मिला। वर्ष था 1952, उनकी नायिका थी रेहाना। आगे बढ़ने

0: तो पहले सुनते हैं मर्यादा फिल्म का ये गाना जो बनी थी 1971 में।
1: कहते हैं हर दयार में आती है फिर बहार, खिलते हैं फूल भी वहां दौरे खिजां के बाद।

राजकुमार एक ऐसे अदाकार थे जिन्होंने हर भूमिका को सजीव कर दिया है, वो फिर मदर इंडिया का मजबूर किसान हो या दिल एक मंदिर का कैंसर ग्रसित मरीज हो। जिस भूमिका को कुछ भी स्कोप नहीं होता, उसमें भी वो अपनी अदाकारी व लाजवाब संवादों की अदायगी से जैसे रंग भर देते।

राजकुमार देखने में एक साधारण व्यक्तित्व के मालिक थे। न हीरो जैसा रंग रूप था उनका, पर फिर भी अपनी बेमिसाल अदाकारी और डायलॉग डिलीवरी से उन्होंने वो मुकाम हासिल किया जिसे पाने में हर कोई सफल नहीं होता। फूल बने अंगारे इस फिल्म में वो फौजी बने हैं। इस फिल्म के गाने भी काफ़ी पॉपुलर हुए हैं और उन्हें पर्दे पर गाया है राजकुमार ने। गाने का रोमानी अंदाज और राजकुमार की पुरकैफ अदायगी से जैसे चार चांद लग गए हैं।

0: राजकुमार अपने असली रंग में आए 1965 में बीआर फिल्म्स की प्रस्तुति मल्टी स्टारर फिल्म वक्त में। निर्देशक थे यश चोपड़ा। वास्तव में इसी फिल्म से लोगों को उनकी अनोखी संवाद अदायगी के दर्शन हुए।
1: माल आखिर खरीदार के पास ही जाता है चुनाव सेठ।
2: माल क्या लाए?
1: आज फिर अपने आप को बेचने आया हूं।
2: ओ, कीमत?
1: चुनाव सेठ रवि मेरा भाई है।
2: तुम्हारा भाई?
1: सगा भाई।
2: यह रात कब मालूम हुआ? तो
1: मंगनी से एक दिन पहले। उस रात जब मैं गुस्से में रवि की जान लेने की नियत से गया था, और आज आज वो सब खुशियां लुट गई। मीना और रवि की मंगनी टूट गई। रवि घर छोड़कर चला गया। मित्तल रवि के बाप का नाम जानना चाहता है, वो नाम सिर्फ मैं बता सकता हूं।
2: फिर बताते क्यों नहीं?
1: इसलिए कि मेरा एक माजी है, और वो माजी सिर्फ एक आदमी जानता है।
2: और वो आदमी मैं।
1: हाँ, सौदा यह है चुनाव सेठ कि मैं अपनी आत्मा आपके हाथ बेचता हूं। जिंदगी भर आपका गुलाम रहूंगा। जो कहेंगे आप वही करूंगा। और आप अपनी जबान बंद रखेंगे ताकि मेरे गुनाहों का साया रवि के आने वाली जिंदगी पर न पड़े।

बीआर फिल्म्स के साथ उनका रिश्ता इस प्रोडक्शंस की अगली फिल्म हमराज में भी रहा, जो आई थी 1967 में। इस फिल्म का उन पर फिल्माया गया ये गाना आज भी उतना ही पॉपुलर है।

0: चले।
1: एक साल बाद यानी 1968 में सुप्रसिद्ध उपन्यासकार गुलशन नंदा के उपन्यास पर आधारित फिल्म नीलकमल में एक पेचीदा रोल उन्हें मिला। उस रोल को भी उन्होंने अपनी अद्भुत अभिनय क्षमता से ऐसा साकार किया कि बयान करना मुश्किल।

1970 में आई फिल्म हीर रांझा अपने तरह की एक अद्भुत फिल्म है, जिसका हर किरदार डायलॉग पोएट्री के रूप में बोलता है। फिर भी कहीं पर भी नाटकीयता नजर नहीं आती। ये चेतन आनंद के निर्देशन का तो कमाल था ही, पर मेन रोल कर रहे फिल्म के रांझा यानी राजकुमार की एक्टिंग का भी लोहा हर एक को मानना ही पड़ा है।

0: नहीं।
1: 1972 में फतेहपुर शिखरी के बैकग्राउंड पर एक ऐतिहासिक लगने वाली फिल्म बनी थी लाल पत्थर, वो भी एक जीता जागता नमूना है राजकुमार की अदाकारी का।

इसी साल यानी 1972 में रिलीज हुई थी कमाल अमरोही की यादगार फिल्म पाकीजा। हर दृष्टि से संपन्न ये फिल्म भी एक दस्तावेज है। कमाल अमरोही के कमाल के डायलॉग राजकुमार ने बाकमाल तरीके से कहे हैं कि भुलाए नहीं बनते। आपके पांव देखे बहुत हसीन हैं, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे।

0: नहीं नहीं, आप बच्चे की छोटी कसम नहीं खा सकते। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हुई, परेशानी ने मुझे पागल बना दिया है, तन मन की सूद खो बैठी हूँ, न जाने आपको क्या क्या कह गई, मुझे माफ कर दीजिए।
1: मैंने आपकी किसी बात का बुरा नहीं माना। अब आप ये बताइए कि अख्तर।
0: जी हाँ, बात तो पुरानी है, लेकिन मुझे उस वक्त मालूम हुई जब वो नशे में कितनी फिरदौस का नाम दे रहे थे।
1: जाइए, आप इत्मीनान से घर जाइए। लखनऊ में ऐसी वो कौन सी फिरदौस है जिसे हम नहीं जानते।

0: भारतीय हवाबाजों पर चेतन आनंद ने एक फिल्म बनाई थी हिंदुस्तान की कसम। इसमें राजकुमार अपने जख्मी साथी जवान को देखकर यह ऐलान फरमाते हैं, इस जवान की कसम, जवाब देने आऊंगा हिंदुस्तान की कसम।
1: हर तरफ

राजकुमार एक रहमदिल मगर मुंहफट अखड़ मिजाज अव्वल दर्जे के फनकार थे जो पब्लिसिटी से हमेशा दूर रहे। फिल्मी आडंबर उन्हें नहीं सुहाता था।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री माननीय श्री किरण रिजिजू जी, पश्चिम बंगाल विधानसभा के माननीय अध्यक्ष रथिंद्र बोस जी, पश्चिम बंगाल सरकार के राज्य मंत्री संसदीय श्री उमेश राय जी, पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, राज्यसभा में हमारे अति प्रभावी कुशल साथी रहे भाई रीताब्रता बनर्जी जी, देश के कई राज्यों से आए हमारे माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी, पश्चिम बंगाल सरकार के माननीय मंत्रीगण, इस अवसर पर मौजूद माननीय सांसदगण, पश्चिम बंगाल की 18वीं विधानसभा के सभी नव निर्वाचित माननीय सदस्यगण, लोकसभा महासचिव श्री उत्पल कुमार जी, बंगाल विधानसभा के सचिव, लोकसभा और बंगाल विधानसभा के सभी अधिकारीगण, नमस्कार। आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष और बंगाल विधानसभा के माननीय अध्यक्ष के संयुक्त सहयोग से सिटी ऑफ जॉय कोलकाता में आयोजित उस ओरिएंटेशन प्रोग्राम के अवसर पर 18वीं विधानसभा के लिए चुने गए आप सभी माननीय विधायकों को पुनः बधाई, भविष्य के लिए शुभकामनाएं। इस कार्यक्रम के आयोजकों से मैंने आरंभ में पूछा, जब मुझे प्रस्ताव मिला कि ऐसा कार्यक्रम कितने वर्षों पहले यहां हुआ था, मुझे अभी तक उत्तर की प्रतीक्षा है कि 3 दशक 4 दशक या 5 दशक पहले। बंगाल पुनर्जागरण की भूमि, महान संत रामकृष्ण की साधना, तप और आस्था से जो लौ आभा निकली, उसके सबसे तेज पुंज हुए स्वामी विवेकानंद, उनके ही तप संकल्प कर्मियों की साधना प्रेरणा से जो धारा निकली, उसका प्रस्फुटन था बंगाल की इस धरती पर, बहिर्मुखी चेतना का प्रस्फुटन, आध्यात्मिक तेज के रूप में हजारों वर्षों की गुलामी के मानस से निकल जाने की बेचैनी के रूप में क्रांतिकारी चेतना का प्रस्फुटन इसी बंगाल से हुआ, राजनीतिक चेतना का उद्घोष, समाज सुधार की पुकार, साहित्य कला संस्कृति विज्ञान, कोई क्षेत्र नहीं बचा जहां बंगाल की स्लॉ ने देश में सृजन की नई धारा सृजित नहीं की। अगर नाम लो तो लंबा समय लगेगा, ईश्वरचंद विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, शरदचंद चट्टोपाध्याय, महर्षि अरविंद, जिन्होंने कहा राष्ट्रवाद महज एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, राष्ट्रवाद एक धर्म है जिस ईश्वर की प्रेरणा प्राप्त। मैं जब उनके कमरे के आगे पांडिचेरी में खड़ा हुआ, बहुत कम लोगों को आज याद रहता है, 24 वर्षों तक एक ही कमरे में व्यक्ति ने साधना की, आप उस व्यक्ति की ऊंचाई समझ सकते हैं जिसकी देन थी सावित्री। खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी से लेकर प्रीतिलता वादेदार, सुहासिनी गांगुली, अंडमान के सेलुलर जेल के दीवालों पर कभी नजर डालिए, वो लंबी सूची जिन्होंने सोनार बांग्ला बनाने के लिए खुद को उत्सर्ग कर दिया। इस मिट्टी ने देश और दुनिया को गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे मानवतावादी, वंकिम बाबू जैसे प्रखर राष्ट्रवादी दिए। यह वर्ष देश वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस मिट्टी ने नेताजी सुभाष बाबू के रूप में अमर राष्ट्र नायक, कहूं तो अनमोल हीरा दिया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जिन्होंने नारा दिया एक देश में दो विधान दो प्रधान दो निशान नहीं चलेगा। कला में अद्वितीय नंदलाल बोस, संविधान में उनकी कालजयी पेंटिंग्स, क्या क्या उल्लेख करूं इस धरती के धरोहर की, महानता की सूची लंबी है। फिलहाल हम उन्हें अनगिनत नामों के अर्जित उस गौरव यश और गरिमा को ही याद करें। यह है आपके महानतम अतीत का अति संक्षिप्त तथ्य। बीच के दौर में 60-70 के बीच उसमें ग्रहण लगना शुरू हुआ, घटा तो बादल, 2026 के चुनाव में वह छटा है। नया सवेरा पूरब में नया सूर्योदय, उस विरासत को सजाने संवारने निखारने और ऐतिहासिक मुकाम तक ले चलने का दायित्व आज आप चुने गए नए विधायकों, नीति निर्माताओं और कर्णधारों को जनता ने सौंपा। आप इतिहास के चुने नायक हैं, अपनी भूमिका आप पहचाने। पूर्वोदय, पूरब के राज्यों का उदय भी बंगाल पर निर्भर था, आप याद करें, याद करें, बंगाल जब विकास में देश में सबसे आगे होता था, उसकी रोशनी नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों समेत बिहार उड़ीसा भी पाते थे, अविभाजित बिहार और उड़ीसा इसके हिस्से थे। 2014 से ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते रहे हैं पूरब के राज्यों के उदय से भारत की तस्वीर बदल जाएगी, अब वह सपना साकार करने का क्षण समय ने आपको दिया। आज दुनिया संरक्षणवाद से घिर रही है, युद्धों से विश्व की सप्लाई चेन टूट रही है। इस बार के दावोस के बैठक में जहां वर्ल्ड के टॉप थिंकर्स इकट्ठा होते हैं,

जो कनाडा के प्रधानमंत्री का भाषण था उसका सार था जो मैं आपको बताऊं कि दुनिया में पुराना वर्ल्ड ऑर्डर खत्म हो रहा है जो बड़ा चर्चित हुआ। कहा कि स्ट्रांग डोमेस्टिक इकॉनमी बनाए बगैर आज की दुनिया में कोई रास्ता नहीं, चाहे देश हो या राज्य हो, इट शुड बी एवरी गवर्नमेंट प्रायोरिटी। आशय था कि आर्थिक ताकत बनना ही आज की दुनिया में विकल्प है। और भारत के प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 14 से ही लगातार आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, मेक इन इंडिया स्वदेशी अपनाने की अभियान का रूप दे चुके हैं, हर क्षेत्र इंफ्रास्ट्रक्चर रक्षा स्पेस समेत सभी क्षेत्रों में। पर याद कीजिए बंगाल का वो गौरव, वो ऐतिहासिक दूरदृष्टि, वो अग्रभूमिका जब बंग भंग के विरोध में बंगाल में उठे स्वदेशी आंदोलन को, जिसने भारत की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता से उसे परिचित कराया। यह समय है आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय को याद करने का, जिन्होंने 1901 में बंगाल केमिकल की नींव रखी। महान रसायन शास्त्री, महान गांधीवादी, अकादमिक वर्ल्ड में बहुत बड़े नाम, देश दुनिया में पढ़े, पर गांधीवादी। हालांकि 44 में वह नहीं रहे, देश की आजादी नहीं देख सके। पर एक छोटा प्रसंग बताऊं, गांधी लगातार परेशान रहते थे कि मैं अंग्रेजों से आजादी की मांग करता हूं, जो पत्र लिखता हूं जो इंक है वही अंग्रेज बनाते हैं, हमारे देश में तो कोई बनाए। प्रफुल्ल बाबू ने सुलेखा स्याही बनाई, उसकी फैक्ट्री लगी। और मैं अगर कहूं कि मुझ जैसे लोग जो बड़े मामूली गांव से आते हैं, उन्होंने भी जीवन की शुरुआत इसी सुलेख स्याही से की, ये बंगाल का तीत और ताकत रहा है। प्रफुल्ल बाबू समेत अनेक, मैं नाम आपको बताऊं, आज जब भारत जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहा है, इनोवेशन और उद्यमिता पर ध्यान दिया जा रहा है। याद रखें हम डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु, भौतिक शास्त्री डॉक्टर मेघनाथ साहा, डॉक्टर सत्येंद्रनाथ बसु, डॉक्टर विधान चंद्र राय जैसे मेधा बंगाल की देन है, जिन्होंने विज्ञान के अलावा राजनीति के क्षेत्र को सक्रिय योगदान दिया। डॉक्टर मेघनाथ साहा जी तो लोकसभा के लिए चुने गए थे, फिर 52 में राज्यसभा के गठन के बाद 12 विभूतियों को राष्ट्रपति ने जिन्हें नॉमिनेट किया उसमें डॉक्टर सत्येंद्र नाथ बसु भी थे। लंबे समय तक भारत की अर्थव्यवस्था का धुरी या केंद्र रहा बंगाल। पिछली सदी के पहले भाग तक भी राजस्थान गुजरात से लेकर अन्य जगह से व्यवसाय करने वाले, व्यापार करने वाले अवसरों की तलाश में कलकत्ता आते थे। तब भी बंगाल पूर्वोत्तर भारत, बर्मा, चीन, दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापारिक सांस्कृतिक संपर्क का द्वार था। तो और अतीत में देख ले तो रूपनारायण नदी के तट पर स्थित ताम्रलिपि बंदरगाह सदियों दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ हमारे समृद्ध व्यापार का प्रमुख केंद्र रहा। यहीं से सम्राट अशोक ने सिंघल द्वीप श्रीलंका के लिए बोधि वृक्ष के साथ भगवान बुद्ध का संदेश भेजा था। भारत ने व्यापार और मानवीयता को कभी अलग नहीं किया, उसका केंद्र रहा है बंगाल। आज भी बंगाल के बिना एक्ट ईस्ट पॉलिसी की कल्पना नहीं हो सकती। बंगाल भारत का औद्योगिक हब था, क्या नहीं था बंगाल के पास? उर्वर भूमि, खाने, खनिज, नदियां और बंदरगाह, आर्थिक प्रगति के सभी संसाधन प्रकृति ने बंगाल को दिए, प्रतिभाओं का पुंज भी। 70 के दशक तक बंगाल के उद्योगों का अवसान काल रहा या विकास का, यहाँ के उद्योग या तो बीमार हो गए या फिर बाहर गए। बंगाल के जिन हुनरमंद कारीगरों ने ब्रिटिश उद्योग, ब्रिटिश सत्ता को टक्कर दी थी, वे अपनी ही चुनी सरकारों से हारने लगे, विवश होकर उन्हें पलायन करना पड़ा। आईटी खड़गपुर यहां बना, लेकिन बंगाल के उद्योग इन प्रतिभाओं को अब्सॉर्ब करने की स्थिति में नहीं थे। 60-61 में देश की जीडीपी के 10% हिस्सा के साथ बंगाल तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था था। 23-24 में भागीदारी घटकर बहुत कम रह गई। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के संजीव सन्याल ने एक अध्ययन प्रकाशित किया है, जिसमें 60 के दशक और मौजूदा हालात में राज्यों के आर्थिक परफॉर्मेंस का आकलन है। मैं सिर्फ एक दो चीजें और कहूं आपको कि दुनिया जब बदल रही थी और वो बंगाल जो आज सोचता था देश कल सोचता था, उसने बदलती दुनिया से बीच के वर्षों में कैसे देखना बंद कर दिया। चीन ने अपनी यात्रा 1949 में शुरू की, 29 वर्षों बाद 78 में पाया कि गरीबी समाजवाद नहीं होना, समाजवाद नहीं है, बेहतर होना आर्थिक विकास रास्ता है। सर्वहारा क्रांति 17 के 72 वर्षों बाद रूस को लगा कि ग्लासनोस्ट और परेस्त्रिका से मुकाम मिलेगा, तब तक देर हो चुकी थी। बगल के वियतनाम साम्यवादी पथ पर यात्रा के 32 वर्षों बाद पाया कि मार्केट इकोनॉमी से कैसे हम करेंगे। आज वियतनाम की स्थिति देखिए, मैं 88-89 में मेरी कर्मभूमि के 5 वर्ष यहां गुजरे हैं और बहुत कुछ सीखा बंगाल से, जिसने मेरे जीवन को समृद्ध किया है, वो कभी भूल नहीं सकता। माननीय विधायकगण, आपसे भी अपेक्षा होगी कि अगले 5 वर्षों में आप बंगाल की पुरानी कार्य

0: संस्कृति बदलें, बंगाल की अर्थव्यवस्था में पुराना गौरव ऊंचाई लौटाएं। बंगाल के पहले सीएम, आज उनको कम लोग याद करते हैं, प्रफुल्ल चंद्र घोष, महान एकेडमिशियन, गांधीवादी का आदर्श जीवन, योगदान, संकल्प की बात कहें तो और समय लगेगा। डॉक्टर विधान चंद्र राय की प्रतिभा देन ने कैसे बंगाल का गौरव बढ़ाए कौन भूल सकता है। पर 26 में जैसा मैंने कहा, एक बड़ी उम्मीद जगी है। जो हमारे नए सीएम साहब हैं सुरेंद्र अधिकारी जी, उनके बयानों को देखता हूं, मेरी मुलाकात है पहली बार हुई, पर इतने कम समय में इतने डिसिसिव डिसीजन और बिना अनर्गल बातें को किए हुए, मैं उन्हें बधाई दूंगा कि वो बंगाल के जिस गौरव, जिस अतीत की मैंने बात की, वो उम्मीद दिखाई देती, उस गौरव से भी वो आगे ले जाएंगे। मेरी शुभकामनाएं। मैंने कहा कि इस सिटी ऑफ जॉय में 5 वर्षों तक मैं रहा और अनेक महान लोगों से मिला जो मेरे जीवन के स्मृतियों के अविभाज्य अंग है, पर एक का उल्लेख कर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। वो महान संपादक थे गौर किशोर घोषदा, बहुत बड़े पत्रकार। उनका वो घटना भारतीय इतिहास में दर्ज है, आपातकाल लगा जून 75 में, उन्होंने अकेले चुपचाप अखबार समूह के आगे सिर मुड़वा लिया, शोक के कपड़े पहन लिया और सड़क पर निकल पड़े और राहगीरों से कहा, जनतंत्र मारा गेलो, लोकतंत्र की हत्या हो गई। फिर उनकी गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी में प्रेसिडेंसी जेल से उन्होंने जो पत्र अपने बच्चों को लिखा, बेटे के नाम 13 वर्ष का बेटा था उनका, अद्भुत है, उन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड से मिला। मुझे फक्र है कि उनको मैंने नजदीक से देखा था और मुझे बहुत सीखने को मिलागा। आज उसी बंगाल को और आप गौरव पर ले जाने के लिए नए लोग हैं जिन्हें बहुत बड़ा दायित्व जनता ने दिया है। आज हम संचार क्रांति युग में हैं, AI ने संचार क्रांति को संवाद क्रांति में बदला है। यह रियल टाइम कम्युनिकेशन सुलभ है, यह आपके काम को सुगम भी बनाएगा और चुनौतीपूर्ण भी। आपको तत्काल सूचना भी मिलेगी और आपकी और आपके कामों की सूचना जनता को भी मिलेगी। आप सरकार से प्रमाणिक सूचना के आधार पर जवाब मांग सकेंगे, साथ ही आपकी जवाबदेही भी बढ़ेगी। यह युग लोकतंत्र में बढ़ती पारदर्शिता का दौर है, अतः आपके विचार, व्यवहार और आचरण सदन के अंदर और बाहर अनुकरणीय बने, उस बंगाल के महान गौरव के अनुरूप बने जिसका हमने, जिसकी झलक दिखाई। हमारे यहाँ कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में कहा है, प्रजा सुखे सुखे राज्य प्रजा नाम तु हिते हितम, यानी जनता के सुख में ही राजा का सुख है और प्रजा के हित में ही राजा का हित है, राजा का अपना कोई हित नहीं होता। आज के अर्थ में लोकतंत्र ने राजा का यह दायित्व चुने हुई जनता ने चुने हुए प्रतिनिधियों को दिया है। आप उस महान विचार परंपरा के वारिस हैं, मैं विश्वास है कि आपका कार्यकाल इन आदर्शों के निर्वहन में श्रेष्ठ साबित होगा। अगले 2 दिन देश के विभिन्न राज्यों के बड़े वरिष्ठ हमारे अध्यक्षगण आए हैं, स्पीकर्स, अनुभवी सांसद, जानकार अधिकारी, आपके विधायी अधिकारों कर्तव्यों के विभिन्न आयामों से परिचित कराएंगे। अपनी बात खत्म करने के पहले मैं बंगाल विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा के सभी अधिकारीगण, राज्य सरकार, सबको अतिथिपूर्ण सत्कार के लिए दिल से बधाई देना चाहूंगा और प्राइड और प्राइड के अधिकारियों को जिन्होंने बहुत सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया है। यह प्रशिक्षण प्रोग्राम विधायक के रूप में आपको दायित्व को निभाने में बहुत बखूबी मदद करेगा, इसका भरपूर उपयोग करें। हमारी शुभकामनाएं, जय हिंद, जय बंगाल, नमस्कार।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्री हरिवंश जी को। मे आई नाउ रिक्वेस्ट श्री किरण रिजिजू, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड माइनॉरिटी अफेयर्स, फॉर हिज एड्रेस।

लोकसभा के स्पीकर आदरणीय ओम बिरला जी, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी, राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश जी, पश्चिम बंगाल के सभापति स्पीकर रतिंद्र बोस जी, नेता प्रतिपक्ष पश्चिम बंगाल असेंबली के रीता ब्रता बैनर्जी जी, संसदीय कार्य के राज्य मंत्री पश्चिम बंगाल उमेश राय जी, कई

राज्यों से आए हुए माननीय स्पीकरगण, विशेष अतिथि, पश्चिम बंगाल में मंत्रीगण और विशेष करके जो चुने हुए नए विधायकगण, मुझे पश्चिम बंगाल के इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर एमएलएस का दो दिन कार्य के लिए आमंत्रित किया। मैं पश्चिम बंगाल के स्पीकर साहब रतिंद्र बोस जी को धन्यवाद देता हूं, आपने मुझे याद किया और आपके बीच में आने का मौका मिला। लोकसभा में हमारे स्पीकर साहब आपके बीच में है, वो अपना विचार कभी शेयर करेंगे और हमारे उपसभापति राज्यसभा ने भी आपको शेयर किए हैं। पार्लियामेंट का जो प्राइड होते हैं उसका मैंने देखा है काफी अच्छा काम होता है। वेस्ट बंगाल असेंबली का साथ तालमेल करके जो काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि दो दिन का इस कार्यक्रम में वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली के जो नए एमएलएस हुए हैं उसका लाभ जरूर उठाएंगे। वैसे तो वेस्ट बंगाल असेंबली का इतिहास पुराना है और ऋतुव्रत जी ने कुछ अंश बताया 1860 से किस तरीके से लेजिस्लेटिव काउंसिल से उभरते उभरते ये मॉडर्न वेस्ट बंगाल का असेंबली का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, ब्रीफली जो बताया। मैंने भी पढ़ा है इसलिए इतिहास और इसके अंदर में मैं ज्यादा नहीं जाते हुए एक दो बातें मैं अपने ओर से रखना चाहता हूं। मुझे बताया गया कि ज्यादातर एमएलए नए फर्स्ट टाइम एमएलए हुए हैं इस बार। मैं जब उड़ीसा गए थे ओरिएंटेशन प्रोग्राम, उड़ीसा के माननीय स्पीकर मैडम भी यहां आए हैं। हमारे देश में दो महिला स्पीकर है असेंबली के, एक हमारे उत्तराखंड के हैं और हमारे उड़ीसा के स्पीकर, दो महिला स्पीकर हुए। तो जब हम उड़ीसा गए थे तो वहां भी ज्यादातर लोग पहले बार चुन के आए, लेकिन आज मैडम ने मुझे बताया अब सब एक्सपीरियंस हो गए हैं, दो साल में सारे नए लोग एक्सपीरियंस हो गए। सबको तो कभी ना कभी तो पहले बार चुन के आना है, सब चुने हुए तो पैदा नहीं होते हैं ना, सबको पहले बार चुन के आना होता है तो सबको पहले बार सीखना होता है और सीखते सीखते कोई लोग बहुत आगे जाता है। जिन्होंने लंबा पार्लियामेंट्री जीवन बिताना है उसका तय शुरू ही करते हैं। देयर आर मेनी पार्लियामेंटेरियंस द लेजिस्लेटर्स हु हैव अ लॉन्ग टेन्योर एंड योर टेन्योर विल डिपेंड ऑन हाउ यू बिगिन योर जर्नी। पहला कदम अगर गलती हो गया तो फिर आगे भी कष्ट मिलेगा, इसलिए जल्दबाज करके कोई हासिल नहीं होता है। लोकतंत्र में हार्ड वर्क, परसिवियरेंस, कंसिस्टेंसी और मेहनत ये रंग लाते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है कि सुबह से जब से असेंबली या पार्लियामेंट शुरू होता है अंत तक बैठता है, लेकिन ऐसा वाला बहुत कम होते हैं आजकल। और ज्यादातर एमएलए या एमपी ऐसे होते हैं अपना बात बोल के तुरंत निकल जाते हैं, दूसरा का सुनता ही नहीं है। अब दूसरा को नहीं सुनेंगे तो फिर मुझे लगता है कि लोकतंत्र में वो सही नहीं है। आपका विचार तो आप रख सकते हैं लेकिन दूसरे के सुनना भी उतना ही जरूरी है। और जो भी लेजिस्लेटर, जो भी पार्लियामेंट्रियन दूसरा का बात ज्यादा सुनता है, आप देखिए उसका जवाब ज्यादा सटीक होता है, क्योंकि वो सुनने के बाद वो तैयार ही रहते हैं। कुछ लोग तो पढ़ के आते हैं और अपना भाषण दे करके तुरंत भाषण खत्म करके चले जाते हैं। पार्लियामेंट्री एथिक्स तो है, आप लोगों को आज शायद शाम को क्लास लेंगे, आपको बताएंगे, शेयर करेंगे। नियम होते हैं और सुबह सुबह बुलेटिन भी इश्यू करते हैं कि कैसे खड़ा करना है, कैसे बात करना है, पीठ नहीं दिखाना है पीठासीन की तरफ और अपना भाषण दे करके तुरंत नहीं जाना है, आपका नेक्स्ट वाला का सुनना है। कई एथिक्स आपका प्रैक्टिस करना होता है। तो पार्लियामेंट्री एथिक्स, पार्लियामेंट्री बिहेवियर का भी अलग एक तो होता है, लेकिन मैंने देखा है बहुत ज्यादा लोग मानते नहीं है इसको, बहुत कम लोग मानते हैं। परिस्थिति भी बदल गई है इसलिए

एक जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि अगर हम अपने आप को कहते हैं कि हिंदुस्तान भारत दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है, तो पुराना लोकतंत्र होने के नाते हमारा जो व्यवहार है, हमारा बिहेवियर है, वो भी उस हिसाब से करना होगा। नहीं तो पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशन कमजोर होगा तो डेमोक्रेसी ऑटोमेटिक कमजोर हो जाएगा। नहीं तो लोग मजाक उड़ाते हैं, ये असेंबली पार्लियामेंट में क्या स्तर का डिबेट हो रहा है। डिबेट का भी एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। डिबेट का स्टैंडर्ड नीचे गिरेगा तो लोग जिन्होंने वोट दिया है वो भी सोचेंगे कि हम लोग कैसे लोगों को वोट दे करके भेजा है। तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बहुत बड़ा जिम्मेदार है। मैं तो ऐसे जगह से आता हूं, ये वेस्ट बंगाल तो हमारे लिए कैपिटल जैसे है, कलकत्ता हमारे लिए सामने में था, दिल्ली दूर था पहले, बाद में दिल्ली कैपिटल हो गया तो हम लोग सीधा दिल्ली जाते हैं आजकल, कलकत्ता कम आते हैं। लेकिन हमारा पिताजी लोग का समय में तो कलकत्ता ही सब कुछ था हमारा, नॉर्थ ईस्ट का। इसलिए हम बोलते हैं वेस्ट बंगाल उठेगा तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया भी अपने आप उठ जाता है, पूरा ईस्टर्न इंडिया का भविष्य वेस्ट बंगाल पर टिका हुआ है। वेस्ट बंगाल बिखर जाएगा, वेस्ट बंगाल कमजोर होगा तो पूरा ईस्टर्न इंडिया कमजोर हो जाएगा। इसलिए अभी डिप्टी चेयरमैन साहब ने कहा शुभेंदु अधिकारी जी अच्छा काम कर रहा है, मैं तो भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं कि शुभेंदु अधिकारी जी के नेतृत्व में वेस्ट बंगाल तरक्की करे और पूरा ईस्टर्न इंडिया को आगे ले जाए और विकसित भारत का बहुत बड़ा इंजन बने। वेस्ट बंगाल बड़ा राज्य है और बहुत ही हाईली पॉपुलेटेड स्टेट है। बिहार और बंगाल का जो एवरेज डेंसिटी पॉपुलेशन है, कभी कभी सोचने से भी कल्पना करना मुश्किल है, इतना हेवीली पॉपुलेटेड स्टेट है। और यहाँ एक एक एमएलए कितना, कम से कम 2.5 लाख, 3 लाख तो एक असेंबली का वोटर है। यूरोप में, इंग्लैंड में 70,000 में एक एमपी होता है, और जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, जो नॉर्दर्न नॉर्डिक कंट्रीज जिसको बोलते हैं, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, यहां 30,000, 25,000 में एक एमपी होता है। इंडिया में एवरेज एक एमपी में लगभग 25 लाख है। वेस्ट बंगाल में एवरेज एक एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसी में कम से कम 3 लाख वोटर है। तो इसका मतलब इंडिया के अंदर में एमपी एमएलए बनना कोई आसान नहीं है, चुनाव तो जीत के आ जाएगा, 5 साल काम करना ये कोई मजाक का काम नहीं है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। हम लोग तो सुबह उठते ही कम से कम 200 आदमी पहले से इंतजार कर रहा है कि हमारे एमपी साहब कब कब उठेगा मदद मांगने के लिए। पश्चिमी दुनिया जो डेमोक्रेसी में कितना अंतर है, हम भी बोलता है वी आर ए डेमोक्रेसी, पश्चिम बंगाल भी वैसे डेमोक्रेसी है, उड़ीसा भी वैसे डेमोक्रेसी है, दिल्ली भी वैसे डेमोक्रेसी सेम है, लेकिन लोकल कैरेक्टर में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। पश्चिम बंगाल में एक अच्छा चीज है कि असेंबली इलेक्शन और लोकसभा में ज्यादा रिसोर्सेस, ज्यादा पैसा खर्चा नहीं होता है, ऐसे बोला है। यहां से बहुत कम्युनिस्ट एमपी आते थे जब हमारे साथ में शुरू शुरू में, मैक्सिमम एमपी वेस्ट बंगाल से लेफ्ट फ्रंट के एमपी आते थे, तो मैंने उस समय पूछा था जितना लेफ्ट एमपी है आप लोगों का कितना खर्चा होता है वेस्ट बंगाल में चुनाव जीतने के लिए, बोलता है नहीं 5,000, 6,000 या 10,000 खर्चा होता है, वो तो चाय पानी का खर्चा होता है, लेकिन वोटर को पैसा नहीं देते हैं। लेकिन कोई कोई जगह में वोटर पैसा भी लेता है इंडिया में आजकल, इसको भी कैसे बंद करना है ये हम लोग को सोचना होगा। पैसा देकर के इलेक्शन जीतना तो ठीक बात नहीं है, लेकिन इंडिया का पॉलिटिकल करेक्टर और वेस्टर्न वर्ल्ड का डेमोक्रेसी में कितना अंतर है। मैंने किसी विधानसभा में ये जिक्र किया था, मैंने बताया था मैं इंग्लैंड में जब गया तो इंग्लैंड में सबसे सीनियर मोस्ट एमपी, उसको फादर ऑफ द हाउस बोलते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स में, वो 7 टाइम्स एमपी कंटिन्यूस जीतने के बाद उसको टाइटल मिला है फादर ऑफ द हाउस। हमारे यहां फादर ऑफ द हाउस कॉन्सेप्ट नहीं है। तो उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुझे ले गए 2004 में, एक पार्लियामेंट्री एक्सचेंज प्रोग्राम था। तो इंग्लैंड, साउथ इंग्लैंड में सेंट स्टेफोर्ड शायर, साउथ स्टेफोर्ड शायर, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुझे ले गए।
तो एमपी साहब ने मुझे दिन भर घुमाया। देखो यहां एक एमपी का जिंदगी कैसा है इंग्लैंड में, मुझे दिखाया। दिन भर में एक भी आदमी उसके पास मदद मांगने के लिए नहीं आया, कोई एप्लीकेशन देने के लिए नहीं आते वहां में, रात को फोन करके कोई चीज मांगता नहीं है वहां में। डेवलप कंट्री है और सब कुछ व्यवस्थित है। वहां अगर कोई इश्यू होता है तो जैसे कोई क्लाइमेट इश्यू होगा, टैक्सेशन पॉलिसी मैटर, या कभी लॉ एंड ऑर्डर इश्यू होगा, तो वो भी जनरल लोग गैदरिंग करते हैं और अपना प्रतिनिधि अपना एमपी एमएलए को बताते हैं कि ऐसा प्रॉब्लम है। वैसे आदमी कम है एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, ऊपर से कंप्लेन देने वाला कोई नहीं है। या हम लोग एक एमएलए का कॉन्स्टिट्यूएंसी में 3 लाख आदमी, ऊपर से सुबह से शाम तक कंप्लेन देने वाला बहुत होते हैं, पानी का प्रॉब्लम मांगने के लिए, एजुकेशन का, हेल्थ का। कोई कोई जगह में तो आदमी मारपीट करके जेल जाता है, वो बेल निकालने का खर्चा भी एमपी दे दो बोलता है, एमएलए दे दो बोलता है। हमारा देश का प्रॉब्लम मामूली नहीं है। पश्चिम देशों में, इंग्लैंड वगैरह में या अमेरिका में, मैं तो बताता हूं, आपका इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का जिंदगी और भारत में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का जिंदगी में जमीन और आसमान का फर्क है। वहां एक बार इलेक्टेड हो गए तो सिर्फ सोचना है, भाषण देना है। यहां तो हम लोगों को सोचना भी है, भाषण भी देना है, लोगों का प्रॉब्लम भी घर घर सॉल्व करना है। मामूली नहीं है हमारा जिंदगी। इसलिए इंडिया के अंदर में किसी भी राज्य में एमएलए एमपी होना ये कोई आराम का मामला नहीं है। पहले आप आराम से जी सकते हैं, लेकिन जिस दिन आप इलेक्टेड हो गया तो सोच लो आपका असली जिंदगी कठिन शुरू हो गया। इसलिए एमएलए एमपी हो गया बहुत ज्यादा सेलिब्रेट करने का जरूरत नहीं है, यहां आराम मिलता नहीं है, मेहनत करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करके फिर आप अगले इलेक्शन फिर लड़ना है। और आप सोचो दो दो तीन बार जो जीतता है तो और कितना मेहनत करना पड़ेगा। हम भी 8 बार चुनाव लड़ चुका है, कोई ना हमको देख के बोलता है कि ये तो जवान दिखता है, अरे मेरे चेहरे पे मत जाओ, मैं 8 बार चुनाव लड़ चुका हूं। मैं जब लॉ मिनिस्टर था तो चीफ जस्टिस हमको बोला, आप तो लगता है यूनिवर्सिटी से सीधा सीधा चुन के आए हैं। मैं बोला आपको पता नहीं, आप जज बनने से पहले मैं 5 चुनाव लड़ चुका हूं। तो आपका हर चुनाव में एक्सपीरियंस अलग अलग होते जाते हैं और सेम स्टाइल कैंपेन नहीं होता है। कुछ कुछ एमएलए एमपी का कैंपेन का स्टाइल भी अलग अलग होते हैं और पब्लिक ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने के लिए भी मेथड होते हैं। आजकल मोबाइल का जमाने है, तो मोबाइल का जमाने में तो काफी आप तरीका निकल सकते हैं, लेकिन हर मोबाइल हर वोटर का तो आप डायरेक्ट बात तो नहीं कर सकते। एक दिन आप कितना बात करेगा, 200, 300, 10,000 तो बात नहीं कर सकते। खाना खाना भी है, सोना भी है। तो इसलिए एक एज ए लेजिस्लेटर, एज ए पार्लियामेंटेरियन, हमारा जीवन बहुत कठिन है। लेकिन ये कठिन मालूम हो कि हम आया है, ऐसे तो हम तो चुनाव आराम करने के लिए तो नहीं आया है, जनसेवा के लिए आया है। इसलिए हमको मेहनत तो करना ही पड़ेगा। तो ये सब मेहनत करने से पहले नियम कानून सिस्टम जानना बहुत जरूरी है ताकि आप अच्छा परफॉर्म कर सके। ओरिएंटेशन नए एमपी एमएलए के लिए होते रहते हैं, पार्लियामेंट में भी हर चुनाव के बाद ओरिएंटेशन प्रोग्राम होते रहते हैं। ये आईएएस ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर उनका भी तो अपडेट होते रहते हैं, उनका भी उसका फेस वाइज उसका ट्रेनिंग चलता है। जिंदगी तो ट्रेनिंग होते रहना है। मैं 8 बार चुनाव लड़ा, मैं इतना बार जीता है, मुझे सीखना नहीं, ऐसे तो हो नहीं सकता है, सीखते रहना पड़ता है। लेकिन जिन्होंने आर्ट ऑफ लेजिस्लेशन सीख लिया तो असेंबली में उसका दबदबाव रहता है। ये प्रेमचंद्र देखो हमारा, ये इनके प्रेमचंद्र, ये हमारा रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के एमपी है, केरल से आया है, इनको बुलाया अच्छा किया। ये अकेला आदमी है, इसके पार्टी का एक ही एमपी है, लेकिन ये पार्लियामेंट में ऐसे बिहेव करते हैं जैसे उसके पास 10 एमपी है, क्योंकि ये बहुत इफेक्टिव आदमी है, तो इसका बात सुनता है। स्पीकर भी मौका देते रहते हैं इसको, लोग सोचते हैं कि स्पीकर साहब और इसका बेस फिक्सिंग है क्या, बेस फिक्सिंग नहीं है, वो इफेक्टिव पार्लियामेंटेरियन है, इसलिए मौका मिलता है इसको। इसलिए दूसरे एमपी को भी सीखना है, मौका मिलना है तो बिहेवियर अच्छा होना होगा। जो अच्छा बिहेवियर नहीं होगा उसको स्पीकर पसंद नहीं करते हैं। तो ये अपना वेस्ट बंगाल के स्पीकर साहब है, वो भी उसी को ज्यादा मौका देगा जो नियम से बोले।

0: सिस्टम से बोलेगा और तरीके से पेश आएगा। सिर्फ नाराबाजी लगाते रहेगा और गाला गाली करेगा तो उसको मौका ज्यादा नहीं मिलेगा। इसलिए मैं मानता हूं कि हम लोगों के ऊपर में बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। नया नया असेंबली बनने के साथ साथ स्पीकर साहब कॉन्टेक्ट किया मेरे मिनिस्ट्री से, हमने नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का ऑलरेडी इनका एमओयू साइन कराया है। उस दिन मेरे ऑफिस में दिल्ली में मीटिंग हुआ, हमारा मुख्यमंत्री सुरेंद्र अधिकारी जी भी यहाँ ऑनलाइन जुड़े, मैं था हमारे सामने में साइन किया। तो मैं आपको वादा करता हूं, स्पीकर साहब नए हैं लेकिन बहुत एक्टिव है, विद इन नेक्स्ट 3-4 मंथ्स के अंदर में वेस्ट बंगाल असेंबली 100% डिजिटल हो जाएगा। हमने फर्स्ट फेज पैसा भी रिलीज कर दिया है और वन नेशन वन एप्लीकेशन का इस प्रिंसिपल को लेकर के हमारा जो ई गवर्नेंस का स्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने वन नेशन वन एप्लीकेशन, ये पूरा देश भर के जितने असेंबलीज है और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है उसको एक प्लेटफॉर्म में लाने के लिए ये नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का कार्यक्रम शुरू किया। तो इसमें वेस्ट बंगाल असेंबली कॉन्स्टिट्यूट होते ही जुड़ गया और इंप्लीमेंटेशन का प्रोसेस भी शुरू हो गया। मेरा ऑफिस का मिनिस्ट्री का ऑफिशियल टीम को भी हम भेजेंगे और पूरा आपका मैन पावर सब कुछ हम समर्थन देंगे। वेस्ट बंगाल असेंबली इतना पुराना असेंबली है, ये अच्छा से चले उसके लिए हम लोग जितना भी मदद भारत सरकार और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्ट्री से जो मदद होगा हम देंगे। और बाकी तो हमारा पार्लियामेंट की ओर से स्पीकर साहब और डिप्टी चेयरमैन तो यहाँ बैठे हुए हैं, इसलिए कोई फिक्र करने का नहीं है। मैं और ज्यादा नियम नीति के बारे में बात नहीं करूंगा अभी क्योंकि इनॉग्रल सेशन है। जब टेक्निकल सेशन होगा तो उसमें काफी हमारा जो अलग अलग असेंबली का स्पीकर सब यहाँ आए हुए हैं वो अपना एक्सपीरियंस साझा करेंगे आपके साथ में, और बाकी एक्सपर्ट्स लोग भी आए हैं। इसलिए मैं फिर से मुझे यहाँ बुलाने पर मैं आभारी प्रकट करना चाहता हूँ और उम्मीद जताना चाहता हूँ कि ये 2 दिन का ओरिएंटेशन प्रोग्राम हमारा पश्चिम बंगाल के नए चुने हुए एमएलए के लिए बहुत लाभदायक होगा। और आपका डिजिटल पूरा होने के बाद हर एमएलए का हाथ में सारा असेंबली का इंफॉर्मेशन एक क्लिक, कोई बिल है, कोई बिजनेस है, क्वेश्चन है, सारा चीज आपको कुछ तकलीफ करने नहीं होगा, एक बटन दबाने से आपका हाथ में अवेलेबल हो जाएगा। तो स्मार्ट असेंबली स्मार्ट लेजिस्लेटर ऐसा हमारा वेस्ट बंगाल का बनेगा मैं उम्मीद करता हूं। और फिर आपका भविष्य में अच्छा हो, आपका वेस्ट बंगाल का भविष्य के लिए, आपका अपना निजी भविष्य के लिए मैं प्रार्थना करते हुए अपने बात को मैं समाप्त करना चाहता हूं। जय हिंद, जय वेस्ट बंगाल।
1: थैंक यू सो मच सर, पर्टिकुलरली फॉर शोइंग अस द विजन ऑफ द स्मार्ट फ्यूचर। श्री शुभेंदु अधिकारी, माननीय मुख्यमंत्री पश्चिम बंग, अब हम आपसे संबोधन के लिए आग्रह करते हैं।
2: भारत माता की, भारत माता की, वंदे। रिस्पेक्टेड मिस्टर ओम बिरला जी, ऑनरेबल स्पीकर, द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम इन आवर कंट्री, ही इज लीडिंग द पार्लियामेंटरी सिस्टम। प्लीज एक्सेप्ट माय बेस्ट रिगार्ड्स फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट। मंच पर हमारी राज्यसभा का डेप्यूटी चेयरपर्सन हरिवंश जी है, मैं उनको आभार प्रकट करता हूं और उन्होंने बड़ा शानदार भाषण भी दिया है यहाँ इनॉग्रल जो हमारी चल रहा है सेशन। हरिवंश जी, ये सिटी ऑफ जॉय कलकत्ता में पत्रकार के रूप में, मीडिया पर्सन के रूप में काम किया, मैं फिर एक बार उनको स्वागत और वंदन करता हूं। मिस्टर किरण रिजिजू जी सिटिंग ऑन द डायस, इज वेरी वेल नोन पर्सन टू मी, उनका साथ में

मेरा पिछले कोई साल काम करने का मौका मिला, आगे भी मिलेगा। मैं किरण रिजिजू जी को मेरा दिल से आभार प्रकट करता हूं। ये पूरा जो अरेंजमेंट है उनका अरेंजमेंट किया है हमारी स्पीकर साहब रथेंद्र बोस जी। ही इज ए वेरी डायनामिक एनर्जेटिक स्पीकर ऑफ वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली। प्लीज एक्सेप्ट माय बेस्ट विशेष टू मिस्टर रथेंद्र बोस आवर ऑनरेबल स्पीकर। उमेश राय जी है एमओएस पार्लियामेंटरी अफेयर्स एंड लीडर ऑफ अपोजिशन ऋतव्रत बनर्जी। इस दो दिन का जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम है ओरिएंटेशन हमारी जो कार्यक्रम, इसमें बहुत सारा प्रदेश से अध्यक्ष जी आया है, खास करके यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, सिक्किम। मैं सबको पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से तहे दिल से मैं वेलकम कर रहा हूं, आभार प्रकट कर रहा हूं। और द पार्लियामेंटेरियन मिस्टर प्रेमचंद जी भी सिटिंग इन दिस हाउस। आई वुड लाइक टू कन्वे माय बेस्ट विशेष मिस्टर प्रेमचंद जी। আমার সাথে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সমস্ত সদস্য সদস্যরা, আমার কলিগ মিনিস্টাররা এবং এই ব্যবস্থাপনা যারা করেছেন স্পিকারের সচিবালয়ে এবং রাজ্য সরকারের আধিকারিক তারা আছেন। খাস করকে যে আমারি পার্লামেন্ট সে যে আধিকারিক লোক, পার্লামেন্ট কা সচিব সে লেকর সব লোক নে ইসকো মদদ কিয়া হ্যায়। ইতনা ডেড় মহিনে কা सरकार है, असेंबली है, उसमें आप लोग इतना मदद किया, इसलिए इतना अच्छा कार्यक्रम, एक मीनिंगफुल ओकेजन ऑर्गेनाइज हम लोग किया, इसलिए लोकसभा सेक्रेटरिएट को मैं दिल से आभार प्रकट करता हूं। पहले तो मैं ज्यादा बात नहीं भूलूंगा, आज सब एमएलए लोग का इस ओरिएंटेशन कैंप में अच्छा करके सीखना है। जो बात कुछ दिन पहले मिस्टर रिजिजू जी ने बताया, ये कोई पहली बार जो चुन के आता है उनको सीखना पड़ता है, इसलिए ये दो दिन का कैंप में आप सबको सीखना पड़ेगा। लेकिन ये जो असेंबली है इसका जो एक इतिहास है ये सबको आज बोलना मैं चाहता हूं। ऑनरेबल स्पीकर साहब है मिस्टर ओम बिरला जी, अदर डिस्टिंग्विश गेस्ट सिटिंग ऑन द डायस। 1947 जब हमारी देश को बाइफर करने के लिए बात चल रहा था ब्रिटिश का साथ, और उस वक्त ये बंगाल जो अनडिवाइडेड बंगाल था ये कहां जाएगा, पाकिस्तान में जाएगा ना इंडिया में रहेगा, इसके ऊपर बहुत सारा बात हुआ, डिस्कशन हुआ, बहुत सारा चर्चा हुआ। फाइनली रूलर गिवन टाइम ब्रिटिश दे डायरेक्टेड कि प्लीज आप लोग जो आज जो असेंबली है विधानसभा उनका नाम था आईन सभा, जो आप वहां जाओ, वहां जाकर मेजोरिटी का ओपिनियन लो, ओपिनियन लेकर आओ, उसका बाद हम लोग फैसला करेगा। ये अनडिवाइडेड इंक्लूडिंग ईस्ट एंड वेस्ट दोनों एक साथ पाकिस्तान में जाएगा, ना ईस्ट जाएगा पाकिस्तान में, वेस्ट रहेगा भारत में। देखिए उस वक्त डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आईन सभा का मेंबर था, उन्होंने ये मुद्दा उठाया एज पर द डायरेक्शन एज एडवाइस बाई द रूरल, ये कहां रहेगा। पूरा दिन बहस हुआ, उसका बाद 58 लॉ मेकर्स कास्टेड देयर वोट इन फेवर ऑफ इंडिया एंड 21 इन फेवर ऑफ पाकिस्तान। इसलिए आज जो खास करके मैं बंगाल से आती हूं, सॉन ऑफ द सॉयल हूं, ये बंगाल भारत में है, इसके सबसे बड़ा डिसीजन इस असेंबली में हुआ था। ये नहीं होता तो पिछले क्या था, आने वाला

क्या होगा वो तो बाद में है। आज जो हम भारत माता के चरण में हम लोग आश्रय मिला है, ये पूरा श्रेय असेंबली का है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का है। उनकी 125वां जन्म जयंती 6 तारीख है, उसको मैं मेरा दिल से नमन और वंदन करता हूं। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं रहता तो हम लोग आज इतना भाषण देने का काम, चुनाव लड़ने का काम, जीतने का काम, राजनीति करने का काम हम लोग को मौका नहीं मिलता। ये हमारी आज का ये ओरिएंटेशन कैंप में सबको स्वीकार करना चाहिए। दूसरा, मैं तो डेली 5 बार आपका सामने बोलता हूं, लंबा रिश्ता है बंगाल का हार चुने हुए पॉलिटिकल पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का साथ, लेकिन मैं कुछ नेगेटिव नहीं बताऊंगा, लेकिन हालत बता रहा हूं। मेरा 4 बार हो गया एमएलए, 2 बार हो गया एमपी, तब मैं 6 टाइम लॉ मेकर बन गया जनता से वोट से। तब यहां जो सिस्टम पहले था, इतना बुरा सिस्टम पहले नहीं था। हमारी जितना भी चीफ मिनिस्टर का नाम हरिवंश जी ने बताया, स्वतंत्रता का बाद कॉन्स्टिट्यूशन जब हुआ उसका बाद, इतना बुरा हालत बंगाल में नहीं था। पहले तो 34 इयर्स पार्टी ऑफिस से सब होता था, असेंबली से कुछ नहीं होता। और पिछले 15 साल तो क्या हुआ मैं आज नहीं बताऊंगा। ये एलओपी है, सब है, हम लोग एक साथ चल रहा है, अभी खड़ा करना है। मेरा अनुभव जो है 2006 का एमएलए डिवीजन कम्युनिस्ट रूल, उसका बाद 2016, उसका बाद 2021 एलओपी, वो जो असेंबली खास करके लीडर ऑफ अपोजिशन, आप ये कोई निंदा का बात नहीं है, अपना असेंबली का आपका राज्य का कोई निंदा करने का कोई चीफ मिनिस्टर का शोभा नहीं होता है। लेकिन मैं ही बता रहा हूं, यहां जो सिस्टम हो गया था एमएलए एमपी का कोई मर्यादा नहीं है, कोई मर्यादा ही नहीं था। एक बीडीओ थानादार वो एमएलए का फोन भी नहीं पकड़ता था, हर डिस्ट्रिक्ट में दिशा कमेटी का मीटिंग भी नहीं होता था। कोई सरकारी कार्यक्रम, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, फाउंडेशन स्टोन लेइंग, इनोग्रेशन, उसमें आप लोग को इनविटेशन नहीं मिलता था। स्वतंत्रता दिवस, रिपब्लिक डे, स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन, कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जयंती, बंगाल में सरकार की एक्सचेकर से जो कार्यक्रम होता था उसमें कोई विधायक, वो विधायक कुछ विधायक को मिलता था, उनका पॉलिटिकल आइडेंटिटी को देखते हुए उनको इनविटेशन मिलता था। ये ठीक नहीं है। चुनाव होगा, चुनाव के दौरान पॉलिटिकल फाइट होगा। पिछले 5 साल में एनओपी था, एक भी एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग में नहीं बुलाया, मुझे 5 बार असेंबली से सस्पेंड किया, 7 महीने के अंदर 11.5 महीने असेंबली का बाहर एनओपी था। हर बजट सेशन, इंपॉर्टेंट सेशन जब आता था उसको सस्पेंड कर दो, उसको सस्पेंड कर दो, इस तरीके से हालत था। लेकिन आज हालत बदल गया, जनता ने बदल दिया, पूरा मौसम बदल गया। मैंने 5 बार ये 1.5 महीने में एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू मीटिंग किया, सब एमएलए को बुलाया, मेरा पार्टी का एमएलए लोग को भी बुलाया, अपोजिशन का एमएलए लोग को भी बुलाया। बजट हुआ हमारा, रूलिंग पार्टी का एमएलए का काम भी बजट में है, ऑपोजिशन का काम भी बाजन में हम लोग रखा है। एक साथ बंगाल को खड़ा करना चाहिए। स्पीकर साहब मुझे बोल रहा था मंच पर, ये शुभेंदु जी बंगाल में पहले जैसे माहौल था वो बना दीजिए, इसमें इतना हाई रीच ह्यूमन रिसोर्स है, ये हमारी डिवोशनल कैपिटल है,
श्री चैतन्य देव स्वामी विवेक

0: आनंद की भूमि है, इसको ये एजुकेशन हब है, ये इंडस्ट्री का हब है, यह प्रकृति मां भगवान ने सब दिया है। इतना रॉ मटेरियल, इतना अच्छा गंगा माता, इतना बड़ा बेट ऑफ बंगाल समुंदर, इतना खूबसूरत टाइगर हिल, इतना अच्छा हमारी फॉरेस्ट, इतना बड़ा बड़ा राजमार्ग, इतना अच्छा रेलवे कनेक्टिविटी, इतना बड़ा स्टेट, इट्स ए गेटवे ऑफ एंटायर नॉर्थ ईस्टर्न, नॉट ओनली द नॉर्थ ईस्टर्न, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, द नेबरिंग कंट्री, सब इस स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। इतना अच्छा अच्छा हमारी सी पोर्ट है, रिवर पोर्ट है, इतना मौका है, इतना हाई स्किल पीपल है, इतना ह्यूमन रिसोर्स में क्वालिटी है, जितना भी नोबेल मिला है देख लीजिए सब बंगाल से आता है। इसको खड़ा करना चाहिए, मजबूत करना चाहिए। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो आवाज, विकास भी होगा, विरासत भी होगा, यही अगले दिन बंगाल में लेकर जाना चाहिए। स्पीकर साहब मुझे एडवाइस किया है, वो बहुत अनुभवी नेता है, मेरा बड़ा भाई है, मुझे गाइड करता है। आने वाला दिन में बंगाल में डेमोक्रेसी को अच्छा मजबूत करना, पार्लियामेंटरी सिस्टम को अच्छा करना और हमारी एमएलए लोग को बहुत पॉपुलर बनाना, सरकार का साथ जोड़ के काम करना, ये सब में हम लोग काम करेगा और हमारी असेंबली में बहुत सारा काम करना है। हम लोग आने के बाद में स्पीकर साहब को रिक्वेस्ट किया था, लाइव कर दीजिए ना, जिसको जो बोलना है जनता को देखने दीजिए ना, ये कौन क्या करता है, हम लोग क्या कर रहा है देखने दीजिए। लाइव चालू हुआ, लाइव नहीं था, ये तो शर्म का बात है। पूरा आपका लोकसभा सेक्रेटेरिएट यहां है, दूसरा बड़ा बड़ा प्रदेश का स्पीकर साहब लोग है, यहां अभी भी वोटिंग होता है पेपर में, इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मीटिंग आर नॉट फंक्शनिंग, ये अच्छा बात नहीं है। सब लोग सुन रहा है, लाइव कर रहा है, इसको सुधारना चाहिए। असेंबली इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल सिस्टम, डिजिटल लीडरशिप में जितना काम भारत के पार्लियामेंट में मोदी जी का मार्गदर्शन में हो रहा है, ओम बिरला जी का डायरेक्शन में हो रहा है, ये कुछ काम बंगाल में भी होना चाहिए। इसलिए बंगाल असेंबली, उनका लाइब्रेरी, उनका म्यूजियम, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका सब सब जनता ओरिएंटेड होना चाहिए। बाबा साहेब अंबेडकर जी ने एक संविधान दिया है जो हमारी फाइनल वर्ड है, उसमें तीन लाइन है, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, नॉट फॉर द पार्टी, नॉट बाय द पार्टी, ऑफ द पार्टी। एक साथ काम करूंगा इस ओरिएंटेशन कैंप में, इतना जल्दी में स्पीकर साहब और उनकी जो डिपार्टमेंट है उन्होंने अरेंजमेंट किया, कुछ भूल होगा तो थोड़ा आप लोग कंसीडर कर देना, ये पहली बार है। आने वाला दिन में बंगाल फिर एक बार देश में लीड करेगा, इस उम्मीद का साथ मैं मेरा बात खत्म करता हूं। वंदे मातरम।
1: बहुत बहुत धन्यवाद लोकसभा के माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी की गरिमामयी उपस्थिति के लिए हम अत्यंत आभारी हैं। अब हम उनसे संबोधन के लिए विनम्र निवेदन करते हैं।

ऐतिहासिक और विरासत धरती पर आप सबसे मिलने का सौभाग्य मिला। मैं आप सभी विधायकों को, जिन्होंने जनता ने बड़ी विश्वास भरोसे के साथ आप चुनकर भेजा है, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे राज्यसभा के उपसभापति डॉक्टर हरवंश जी, पश्चिम बंगाल के यशस्वी लोकप्रिय और जो पश्चिम बंगाल की विरासत को आगे बढ़ाते हुए नई आधुनिकता की ओर बंगाल को बनाने का जिनका संकल्प है, शुभेंद्र अधिकारी जी, पार्लियामेंट में हमारे साथी संसदीय कार्य अल्पसंख्यक मंत्री श्रीमान किरण रिजिजू जी, इस विधानसभा के अध्यक्ष जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं श्री रविंदर बसु जी, प्रतिपक्ष के नेता श्री ऋतुवत बनर्जी जी और संसदीय कार्य मंत्री श्री उमेश राय जी, यहां पर इस कार्यक्रम में पधारे विधानसभा के विभिन्न अध्यक्षगण, संसद सदस्यगण और इस कार्यक्रम में आए पश्चिम बंगाल के सभी मंत्रियों का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपको ऐसे राज्य का प्रतिनिधि बनने का सौभाग्य मिला है जिसने भारत को विचार दिया, दिशा दी, प्रेरणा दी। यह आप सबके लिए सौभाग्य का विषय है। पश्चिम बंगाल की धरती साहित्य, कला, संस्कृति, आध्यात्मिक चेतना, उद्योग, शिक्षा, बौद्धिकता और आजादी के आंदोलन की दिशा देने वाली यह धरती है। और इस धरती पर ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने आध्यात्मिक धर्म संस्कृति के साथ भारत की आजादी को स्वर दिया, भारत की संस्कृति को दुनिया में पहुंचाया, समाज सुधार का आलोक जगाया और आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए वंदे मातरम के गीत के साथ हजारों लोगों ने कुर्बानियां दी। उस वंदे मातरम को गीत रखने वाले भी यहां के राजा राममोहन राय जी हो, स्वामी विवेकानंद जी हो, बंकिम चंद चटर्जी हो, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, इन सबका अलग अलग कालखंड में योगदान रहा, आज भी राष्ट्र उनको याद करता है, हम सबको उनसे प्रेरणा मिली। माननीय सदस्यगणों, आपको जनता ने बड़ी अपेक्षाओं के साथ चुनकर भेजा है और एक विधायक से बहुत अपेक्षाएं होती है, आकांक्षाएं होती है, जो उनकी चुनौतियां हैं, जो कठिनाइयां हैं उसको समाधान निकालने की जिम्मेदारी आप। और मुझे खुशी है कि इस विधानसभा में 181 मान्य सदस्य पहली बार चुनकर आए जो अपने आप में एक इतिहास है। यहां पर 94 विधायक 25 वर्ष से 55 वर्ष की उम्र तक है, युवाओं महिलाओं का नेतृत्व वाली ये विधानसभा निश्चित रूप से आने वाले समय में आपका कालखंड लोग याद रखे, इसलिए

हमें संसदीय परंपराओं, संसदीय प्रपाटियों और संसदीय गरिमा को ऊंचा उठाते हुए राज्य के विकास के लिए योगदान देना है। और इसलिए एक विधायक की भूमिका कैसी होनी चाहिए, आपने जनता को चुनकर भेजा है, जहां आपकी एक अपनी विधानसभा की जिम्मेदारी है वहां इस राज्य के विकास की जिम्मेदारी भी आपकी है। इस राज्य की नीतियां, कानून, राज्य के लोगों की आकांक्षाएं, यह भी एक विधायक की जिम्मेदारी होती है। इसलिए आप पूरे राज्य की सामूहिक आकांक्षाओं के प्रतिनिधि भी हैं। आपके हर विचार, हर तर्क, संवाद हम केंद्र में जन कल्याण को रखें, लोगों की आपदा चुनौतियों के समाधान का रास्ता ढूंढें। हमारी चर्चा संवाद के अंदर जहां समस्या भी हो, कठिनाई भी हो, चुनौतियों की चर्चा भी हो, लेकिन उसके समाधान के रास्ते भी हों। अच्छी विधानसभा की बस वही होती है जहां आप आलोचना भी करें या कठिनाई भी रखें, लेकिन उसके साथ उसका समाधान क्या है उस समाधान पर भी अपने विचार रखें। और इसलिए आपको विधानसभाओं की शेष परंपराओं को, परपाटियों को आपको समझने की आवश्यकता होगी। आपको यहां पुरानी डिबेट या बनने वाले कानूनों या बनने वाले बड़े मुद्दों पर जो चर्चा हुई है उसका अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि इस विधानसभा की बहुत ऐतिहासिक रही है। जैसे अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि विधानसभा ही राज्य देश के निर्णय करती है, और इसलिए बंगाल कहां जाए यह भी राज्य की विधानसभाओं में निर्णय हुआ है। इसलिए राज्य विधानसभा राज्य की जनता के कल्याण के लिए नीतियां कानून बनाने के साथ उनके समाधान, उनके बेहतर जीवन के लिए भी काम करती है। इसलिए आप जितनी विधानसभा के अंदर तर्कपूर्ण तरीके से तथ्यों के आधार पर अच्छी चर्चा संवाद करेंगे उतना ही आप अच्छा नेतृत्व दे पाएंगे, और ये विधानसभा के इस नेतृत्व से ही राज्य का नेतृत्व निकलता है, देश का नेतृत्व निकलता है। और इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, हमेशा जीवन में सीखते रहें, नए अनुभव लेते रहें, अच्छे श्रेष्ठ विचारों को साझा करते रहें। जहां भी, जिस समय भी, जिस वक्त भी मिले, जीवन में सीखने की आकांक्षा होनी चाहिए, कुछ नए करने की आकांक्षा होनी चाहिए। मेरी विधानसभा के अंदर, मेरे राज्य के अंदर, मैं राज्य विधानसभा के विधायक के रूप के अंदर क्या नया बदलाव ला सकता हूं, इसकी चर्चा हमें सदन में करने की आवश्यकता है। और इसीलिए यह समय डिजिटल का समय है, डिजिटल के नवाचार का समय है, और एआई टेक्नोलॉजी का भी समय है। आप देश और दुनिया की विधानसभाएं, पार्लियामेंट, उनकी डिबेट, उनकी चर्चाएं, उनके अच्छे अनुभव, उनके विचार, जनता के अच्छे कल्याण, नीतियां, कानून, ये सब आज एक प्लेटफॉर्म पर आप देख सकते हैं। आप दुनिया के बजट देख सकते हैं, देश के अलग राज्यों के बजट देख सकते हैं। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के आग्रह पर एक प्लेटफॉर्म पर सारी देश की विधायी संस्थाओं को ला दिया है, इसलिए डिजिटल संसद में आपको संपूर्ण देश की विधानसभाओं की, पार्लियामेंट की, राज्यसभा की चर्चा, डिबेट आपको वहां पर मिलेगी। और मेरा आपसे आग्रह, जितनी देर आप विधानसभा बैठेंगे आपको बोलने का अवसर मिले न मिले, लेकिन नए विधायक हो, पुराने विधायक हो, जितनी देर संभव हो विधानसभा में बैठना, लोगों के विचारों को सुनना, उनके तर्कों को सुनना,

के तथ्यों को सुनना, जितना आप विधानसभा में बैठेंगे उतने ही आपको नए अनुभव मिलेंगे। इससे मेरा आपसे आग्रह पूर्वक है कि नए विधान

इस धरती की आध्यात्मिक चेतना, इस धरती की सांस्कृतिक पुनर्जागरण की यात्रा, इस धरती पर जो विद्वान हुए जिन्होंने समय समय में अलग अलग कालखंड के अंदर देश की संस्कृति विचारों को दुनिया में पहुंचाने का काम किया, उनके विचारों के मंथन को विचार, और यह धरती हमेशा उद्योग शिक्षा कई तरह की विरासत है इसकी, इस विरासत को पुनर्जीवित करना चाहिए। भारत बंगाल की ओर देख रहा है और जब बंगाल की ओर देख रहा है तो आप सब की ओर देख रहा है। मुख्यमंत्री जी का एक विजन, एक सोच है, दूरदृष्टि है कि हम लोकतंत्र, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से, लोकतंत्र की संवाद से डेमोक्रेसी को मजबूत करते हुए हमारी विरासत को वापस लाएंगे, जहां पर हर बड़े निर्णय राज्य की विधानसभा में हो, प्रदेश देश विधानसभाओं की चर्चाओं को देखे। मैं यहां के विधानसभा के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने विधानसभा की कार्रवाई को लाइव किया, ताकि देश देख सके, प्रदेश देख सके कि हम जो निर्णय कर रहे हैं, फैसले कर रहे हैं, कानून बना रहे हैं, जो चर्चा कर रहे हैं, वो देश और प्रदेश के हित में है। और इसलिए मेरा आप सभी लोगों से आग्रह है, ये समय आपके लिए सबसे ऐतिहासिक समय है, ये समय सबसे अच्छा समय है, क्योंकि जो आप आज जो फैसले करके जाएंगे, जो निर्णय करके जाएंगे, ये वर्तमान के लिए भी होंगे, भावी पीढ़ी के लिए होंगे। और इसीलिए इस भावी पीढ़ी और वर्तमान पीढ़ी को आगे ले जाने के लिए आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और मुझे आशा है कि दो दिन तक आपके इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में आप चर्चा करेंगे, अपने अपने तर्क रखेंगे, कुछ सवाल जिज्ञासा होगे तो जिज्ञासा का सवाल भी पूछेंगे, और तर्कपूर्ण तरीके से कैसे चर्चा की जा सकती है, संवाद की जा सकती है, इसके लिए बेस्ट स्पीकर यहां पर आए हैं, और मुझे आशा है आने वाले समय में हम बंगाल के आम जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को बदलना, यही हमारा लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य उस गरीब व्यक्ति की आवाज को बनना। आपको इसलिए चुनकर भेजा है कि आप उनकी आवाज हो, उनकी कठिनाइयां, उनकी चुनौतियां, उनकी आकांक्षा, उनके विचारों को आप विधानसभा के माध्यम तक, सरकार तक पहुंचाएंगे। सहमति असहमति लोकतंत्र में हो सकती है, कहीं आपको भी अपने विचार व्यक्त करने समय कई तार्किक चीजें कहने पड़े, लेकिन निर्वाक रूप से सदन में अपनी बात को कहना चाहिए। और मुझे आशा है आने वाला समय इतिहास आपको याद रखेगा, आपकी को जनता ने बहुत अपेक्षाओं से, बहुत विश्वास से चुनकर भेजा है, और इसलिए हमें लोकतंत्र को, लोकतंत्र की परंपराओं को, लोकतंत्र की श्रेष्ठ संवाद को, चर्चाओं को और श्रेष्ठ बनाना है। हमें इसी विधानसभा से अपने तर्कपूर्ण, तथ्यपूर्ण, विवेकपूर्ण चर्चा कर कानून भी बनाना है, नीतियां भी बनाना है, और नीतियां कानून के साथ ब्यूरोक्रेसी के कामों की समीक्षा भी करना है, क्योंकि जनता का राज इसलिए होता है जहां जनता की सुनी जाती है। और हमारे किरण रिजिजू जी ने बहुत बताया कि यहां के विधायक, यहां के सांसदों की कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, और यही भरोसा है। अब हमारा जीवन देश राष्ट्र के लिए, हमारा जीवन हमारी क्षेत्र की जनता के लिए, हमारा जीवन प्रदेश के लिए, और इसलिए यहाँ के मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये जीवन अब जन सेवा, जन कल्याण के लिए, हम बंगाल की जनता को जो अपेक्षाएं हैं, उन आकांक्षाएं, उस अपेक्षा आकांक्षाओं को पूरा करेंगे, और बंगाल की विरासत जो गौरवपूर्ण है,

0: उस विरासत को भी पुनः जीवित करते हुए आधुनिकता के समय नए युग की तरह 2047 तक विकसित भारत के सपनों को साकार करने के लिए बंगाल को विकसित बनाने का, बंगाल को सांस्कृतिक पुनर्जागरण, बंगाल को उद्योग व्यापार की दृष्टि से बेहतर बनाना और लोगों की अपेक्षाएं आकांक्षाएं समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को बदलने के लिए आप सब मिलकर काम करेंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामना, बधाई।
1: धन्यवाद श्री ओम बिरला जी। परिशेषे धन्यवाद ज्ञापन करबेन परिषदीय विषयक राष्ट्रमंत्री पश्चिमबंग सरकार श्री उमेश रায়।
2: पश्चिम बंगाल के 18वें विधानसभा में निर्वाचित विधायकों के लिए आयोजित इस ओरिएंटेशन के कार्यक्रम में हमारे बीच मार्गदर्शक के रूप में उपस्थित लोकसभा के सम्माननीय स्पीकर आदरणीय श्री ओम बिरला जी, राज्यसभा के डिप्टी चेयरपर्सन आदरणीय श्री हरिवंश जी, पार्लियामेंट्री अफेयर के केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री किरण रिजिजू जी, पश्चिम बंगाल विधानसभा के माननीय अध्यक्ष आदरणीय श्री रथीन बोस जी, पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री ऋतुवर्त बनर्जी जी, सर्वोपरि हम सबके प्रेरणा स्रोत पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री शुभेंदु अधिकारी जी, आज के इस कार्यक्रम में विभिन्न प्रदेशों से आए हुए आदरणीय स्पीकर महोदय, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी अधिकारीगण एवं सभी विधायकगणों का पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। आप लोगों ने अपना कीमती समय निकालकर इस कार्यक्रम को, पश्चिम बंगाल के पूरे व्यवस्था को समझने और आगामी दिनों में इस विधानसभा को चलाने में अपनी भूमिका को समझने के लिए आप कीमती समय निकालकर यहां उपस्थित हुए, इसके लिए आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ पार्लियामेंट्री रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी प्राइड के सभी अधिकारियों का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जो आप लोगों ने इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया। निश्चित तौर पर 2 दिन के इस ओरिएंटेशन कार्यक्रम में हम सब यहां से बहुत सारे विषयों को सीखकर आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल के विधानसभा को चलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आप सब लोगों का एक बार फिर पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से आपका हार्दिक आभार और धन्यवाद ज्ञापन करता हूं।
1: हम राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के साथ उद्घाटन सत्र का समापन करेंगे। कृपया सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाइए।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
3: नमस्कार, मैं हूँ अजीत। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, विजेंद्र कुमार, जयजान, नूर, नमन, सिमरत, मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द राहुल जी ने। लिखते हैं,
2: खुद को बेहतर बनाना ही असली प्रतिस्पर्धा है। किसी से भी ईर्ष्या का सीधा मतलब ये है कि हमने सामने वाले व्यक्ति को हमसे ज्यादा श्रेष्ठ मान लिया है।
3: बहुत बहुत सुंदर विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
2: दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू, दिव्यांश और सूरज कुमार ढाकसे जी लिखते हैं,
3: प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। हमें आपका उमंग कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। हम आपका उमंग कार्यक्रम FM और DTH के रेडियो चैनल पर सुनते हैं। आपके उमंग कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक जानकारी

0: और हीरा। तो अजीत जी, आज हमारा क्या विषय रहेगा? श्रोता बड़ी उत्सुकता से जी जानना चाहते हैं।
1: विमलेश जी, आज हमारा विषय बहुत रोचक होने जा रहा है। आज हम एक ऐसे खनिज की बात करेंगे जो पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाता है, और तो और हम उस पर चलते फिरते भी हैं। अच्छा, चलिए श्रोताओं को दीजिए कुछ हिंट।
0: ठीक है, तो श्रोताओं, उस खनिज का उपयोग हमारे कंप्यूटर, मोबाइल और अनेक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भी किया जाता है। ये हमारे शरीर में भी पाया जाता है।
1: और ये कुछ पौधों में भी पाया जाता है, विशेषकर बांस और घास में तो पाया ही जाता है।
0: श्रोताओं, ये हमारे स्मार्टफोन और कंप्यूटर्स में तो होता ही है, इंटरनेट के उपकरणों और अंतरिक्ष के उपग्रहों में भी चिप्स के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। और हाँ, इससे कांच भी बनता है। तो श्रोताओं, आपने समझ लिया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं।
1: अगर आप सोच रहे हैं कि वो खनिज पदार्थ सिलिका है, तो आप बिल्कुल सही हैं। आइए अब जानते हैं कि सिलिका क्या है। विमलेश जी, आपसे करते हैं शुरुआत।
0: श्रोताओं, सिलिका सिलिकॉन और ऑक्सीजन से बना एक प्राकृतिक खनिज है। ये पृथ्वी की भूपरपर्टी में सबसे अधिक पाए जाने वाले खनिज पदार्थों में से एक है। आइए सबसे पहले जानते हैं सिलिका शब्द कहाँ से आया।
1: श्रोताओं, सिलिका शब्द लैटिन भाषा के सिलेक्स शब्द से आया है, जिसका अर्थ है चकमक या कठोर पत्थर। बता दें कि पृथ्वी की सामान्य रेत का अधिकांश भाग सिलिका से ही बना होता है। इसी सिलिका से एक विशेष वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन को अलग करके सिलिकॉन बनाया जाता है।
0: और इसी सिलिकॉन से बनते हैं मोबाइल, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में लगाए जाने वाले चिप्स। सुंदर क्वार्ट्स क्रिस्टल वास्तव में सिलिकॉन का ही रूप हैं। अजीत जी, एक प्रश्न मेरे मन में आता है, वो ये है कि क्या जिस रेत या धूल पर हम चलते हैं, क्या वही सिलिका है?
1: विमलेश जी, ऐसा कहना आंशिक रूप से सही है, पर पूरी तरह से नहीं। ये जानना जरूरी है कि साधारण रेत या धूल के कण पूरी तरह से सिलिका नहीं होते।
0: जी
1: धूल कई प्रकार के कणों का मिश्रण होती है, जैसे मिट्टी, जैविक पदार्थों के अवशेष और कुछ खनिज।
0: बता दें कि सिलिका सबसे अधिक रेगिस्तान और समुद्र की रेत में पाई जाती है, लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसा क्यों?
1: ऐसा इसलिए कि रेगिस्तान बनते हैं बहुत सारी चट्टानों के टूटने से। इन चट्टानों में खनिज पदार्थों के रूप में सिलिका पहले से ही मौजूद होती है। चट्टानों के टूटने से सिलिका के कण रेत और मिट्टी में फैल जाते हैं, और जहाँ तक समुद्र की बात है, यहाँ सिलिका की मात्रा बहुत अधिक होती है, क्योंकि नदियाँ समुद्र की ओर बढ़ती हुई पहाड़ों और चट्टानों को जब अपने जल प्रवाह से घिसती हैं, तो उन चट्टानों में मौजूद सिलिका के कणों को समुद्र तक ले आती हैं। श्रोताओं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि समुद्र तट की एक मुट्ठी रेत में मौजूद सिलिका के कणों ने हजारों किलोमीटर की यात्रा की है। तो विमलेश जी, हजारों वर्षों से मनुष्य सिलिका या रेत को देखता आया है,
0: जी,
1: लेकिन ये विचार कैसे आया कि ये इतना महत्वपूर्ण है?
0: इसकी कहानी बड़ी रोचक है। 1824 में स्वीडन के रसायन शास्त्री जॉन जेकब वर्जिलियास ने पहली बार सिलिका से ऑक्सीजन को अलग करके सिलिकॉन की खोज की। लेकिन प्राचीन काल से ही मिस्र और चीन के लोगों ने इसके द्वारा कांच और आभूषण बनाने शुरू कर दिए थे, क्योंकि ये बहुत चमकदार होता है। 1906 में पहली बार इससे पहला इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाया गया।
1: फिर धीरे धीरे शोध होते गए, और आज ये मानव सभ्यता का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। आज हम इसके बिना सौंदर्य प्रसाधनों, चिकित्सकीय उपकरणों, उद्योगों, कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स, इंटरनेट, सौर उपकरणों और उपग्रहों की कल्पना तक नहीं कर सकते।
0: तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी सिलिका खनिज के बारे में। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
1: तो हमारा आज का प्रश्न है, सिलिका और सिलिकॉन में क्या फर्क है? आप हमारे IVRS नंबर पर, यानी 8800-440-5559 पर, और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी CIT NCERT को फॉलो जरूर कीजिए। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है, कैसे जानते हैं हम अपना अतीत।
0: इस कार्यक्रम में विशेष रूप से इतिहास के विभिन्न स्रोतों के बारे में विस्तार से बताया गया है और संदेश दिया गया है कि हमारी ऐतिहासिक विरासत महान है।
2: दोस्तों नमस्कार, एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपका स्वागत है। ये जानने के लिए कि कल क्या हुआ था या आज क्या हो रहा है, हम रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविजन देख सकते हैं या फिर अखबार पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जाना जा सकता
3: है ना साथियों? अच्छा सवाल। यही सवाल निधि और आदिका के मन में भी था। वे छुट्टियों में अपनी नानी के घर गई हुई थी। हुआ यूं कि एक दिन वे समाचार पत्र पढ़ रही थीं। अचानक उनकी निगाह समाचार पत्र के एक अंश पर पड़ी जहाँ छपा

0: था लगभग 2000 साल पहले। वे सोचने लगीं,
1: भला ये कोई कैसे जान सकता है कि 2000 साल पहले क्या हुआ था।
2: हाँ, 2000 साल पहले।
3: नानी माँ।
4: हाँ निधि।
3: ओ नानी माँ, कहाँ हो?
4: अरे यही हूँ, आ जाओ निधि, आओ आधिका बेटी।
3: अरे ये क्या सारे बक्से खोल रखे हैं, क्या कर रही हो?
4: हाँ हाँ बताती हूँ, जल्दी क्या है।
2: कितने ढेर सारे कपड़े हैं नानी माँ, ये तो बहुत पुराने हैं ना?
4: हाँ बेटी, बहुत पुराने हैं, तुमसे और तुम्हारी मम्मी से भी पुराने। और पता है निधि, आधिका जानती हैं आप ये कपड़े हमने कब पहने थे?
3: नहीं पता, बताओ ना नानी माँ।
4: अरे ये कपड़े तो हमारी शादी के हैं।
2: नाना नानी की शादी के कपड़े? भाई वाह, नानी पहले और आज के कपड़े कितने अलग अलग दिखते हैं, है ना?
4: हाँ हाँ निधि, समय के साथ साथ सारी चीजें बदल जाती हैं।
3: नानी एक बात मेरे मन में भी आ रही है, और वो ये कि बहुत पुराने बातों को कैसे जाना जा सकता है?
4: अरे बिटिया, ये बताने के लिए तो हमारे पंकज से बढ़िया और कोई नहीं हो सकता।
2: हाँ हाँ मामा जी से पूछेंगे।
4: हाँ बिटिया, वो तो पुरातत्व वेत्ता है ना?
2: मामा जी।
5: अरे निधि, ओ आधिका, कैसी कट रही तुम्हारी छुट्टियाँ?
3: बहुत अच्छी तरह मामा जी, आज सुबह हम समाचार पत्र पढ़ रहे थे।
5: ये तो बहुत अच्छी बात है
2: जी, उसमें छपा था लगभग 2000 साल पहले, ये लेख किसी सभ्यता के बारे में था मामा जी। भला ये कोई कैसे जान सकता है कि 2000 साल पहले क्या हुआ था?
5: अच्छा अच्छा, तो ये बात है। आओ आओ यहाँ बैठो। अरे बैठो बैठो, मैं तुम्हें कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ, जरा इसे देखो, बता सकती हो कि ये क्या है?
3: ये किसी खुदरी सी शीट की तस्वीर है, इसमें कुछ लिखा गया है, शायद गोदकर।
5: शाबाश निधि, तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना। ये खुरदरी शीट दरअसल एक पेड़ की छाल है जिसे भोज वृक्ष कहा जाता है।
2: अच्छा, भोज वृक्ष?
5: हाँ, भोज वृक्ष हिमालय क्षेत्र में मिलता है। इसकी छाल पर या ताड़ के पत्तों पर उन दिनों लोग हाथ से लिखते थे। हाथ से लिखी होने के कारण ये पांडुलिपि कही जाती है।
3: पांडुलिपि? ये हमें कहाँ मिली है
5: निधि? ये पांडुलिपियाँ ज्यादातर प्राचीन मंदिरों और विहारों से खुदाई में प्राप्त हुई हैं। तुम्हें पता है कुछ पुरानी गुफाओं में भी मिली हैं।
3: अच्छा,
5: और बेटी मैं तुम्हें बताता हूँ, इन पांडुलिपियों में उस समय की धार्मिक परंपराओं, राजाओं के जीवन, दवाइयों, कला और विज्ञान की जानकारी हमें मिलती है। हमें कई नाटक और कविताएं भी मिलती हैं।
2: ये किस भाषा में है?
5: बहुत अच्छा सवाल पूछा है बेटी तुमने, ये ज्यादातर संस्कृत, तमिल और प्राकृत भाषा में है। उन दिनों प्राकृत भाषा का इस्तेमाल आम लोग करते थे।
2: मामा जी अब आगे भी बताइए ना।
5: हाँ हाँ बताता हूँ, अरे धैर्य रखो। अतीत या पुराने समय के बारे में हमें पांडुलिपियों से तो पता चलता ही है, लेकिन हमें बहुत सारी जानकारियाँ अभिलेखों और शिलालेखों से भी मिलती हैं।
2: अच्छा,
5: अभिलेख को अंग्रेजी में इंस्क्रिप्शन कहते हैं। इंस्क्रिप्शन शब्द से ही इंस्क्राइब निकला है, जिसका मतलब है लिखना, खोद कर लिखना या उत्कीर्ण करना, इसको उकेरना भी कहते हैं।
2: अच्छा,
5: और हाँ अतीत को जानने के लिए हम अभिलेखों का भी अध्ययन करते हैं। ऐसे अभिलेख हमें पत्थर या धातु पर खोद कर लिखे हुए मिलते हैं। लगभग 2250 वर्ष पुराने पत्थर पर लिखा अभिलेख या शिलालेख हमें वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से मिला है।
3: अच्छा,
5: ये सम्राट अशोक के आदेश पर लिखा गया है। पत्थर पर लिखने की कला को

0: एपिग्राफी भी कहते हैं और शिलालेख को
1: एपिग्राफ।
0: शाबाश निधि।
1: मामा जी, अभिलेख और शिलालेख में क्या फर्क है?
0: देखो, अभिलेख को किसी भी कठोर वस्तु पर लिखा जा सकता है, मतलब ये कोई धातु भी हो सकती है। ये अभिलेख हमें पकी मिट्टी, सिक्के, तांबे और चांदी पर भी लिखे मिले हैं। लेकिन शिला का मतलब होता है पत्थर। ये लेख पत्थरों पर ही लिखे जाते हैं।
1: मामा जी, आपने शिलालेख की बात की, ऐसे पत्थर पर हमें क्या लिखा हुआ मिलता है?
0: ऐसे पत्थर पर कभी कभी राजा लोग अपने आदेशों को खुदवाते या उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उसका पालन कर सकें।
2: मामा जी, मैंने सुना है कि भूविज्ञानियों के अध्ययन से भी हमें अपने अतीत के बारे में पता चलता है।
0: आदिका, बिल्कुल ठीक सुना है तुमने। भूविज्ञानी मिट्टी के नमूनों, पुराने पत्थरों, पहाड़ों और महासागरों का अध्ययन करते हैं और पता लगाते हैं कि पहले पृथ्वी कैसी थी और आज क्या उसका स्वरूप कुछ बदला है।
2: ओह, कितना रोचक है ये सब जानना।
0: हाँ आदिका, रोचक तो है ही। तो दोस्तों, हमारा समय अब समाप्त होता है। इस वायदे के साथ कि एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपसे फिर भेंट होगी। अब आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।
3: तो साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। अब आपके लिए कुछ करने को, तो चलिए बनाते हैं अभिलेख। तो सबसे पहले आप मुलायम मिट्टी या क्ले लीजिए, फिर उसे हाथों से एक पट्टी की तरह बना लीजिए और उसे गोल या चौकोर जैसा कोई आकार दीजिए। अब सतह को किसी सपाट चीज से चिकना कर लीजिए। तो अभिलेख के लिए अब आपकी पट्टी तैयार है। इस मुलायम मिट्टी पर लिखने के लिए आप पेंसिल या किसी नुकीली लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। अब इस मुलायम मिट्टी पर अपनी मातृभाषा के कुछ अक्षर या शब्द लिखिए या कोई चित्र बनाइए। मिट्टी को सुखा लीजिए और फिर विद्यालय में अपने मित्रों और शिक्षकों को दिखाइए और इसके बाद इसे सहेज कर रख लीजिए। हो गया ना तैयार आपका अभिलेख?
4: आशा है श्रोता मित्रों, आपको ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। श्रोताओं, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह माना जाता है, लेकिन सच ये है कि इससे पहले भी बहुत से लोगों ने स्वतंत्रता के लिए स्थानीय रूप से अपनी आवाजें बुलंद की।
3: इनमें से बहुत सारे जनजातीय या आदिवासी समूह थे जिनमें बिरसा मुंडा, सिद्धो कान्हू इत्यादि बहुत प्रसिद्ध हैं।
4: जी।
3: लेकिन आज श्रोताओं, आपको विशेष रूप से हम बताना चाहते हैं कि कई जनजातीय महिलाएं भी रही
4: जिन्होंने स्थानीय रूप से स्वतंत्रता का झंडा बुलंद किया। इनमें आज हम सुनेंगे कार्यक्रम रानी दुर्गावती पर, जो गोंड आदिवासी समुदाय से संबंधित हैं। उनकी वीरता के किस्से आज भी गोंडवाना भूमि यानी आज के छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में गाए और सुनाए जाते हैं।
3: तो आइए सुनते हैं श्रोताओं कार्यक्रम रानी दुर्गावती।
5: हमारे देश के इतिहास में स्त्रियों के त्याग और महानता की अनगिनत कहानियां मिलती हैं। ऐसी कुछ विरल स्त्रियों में से एक है रानी दुर्गावती। दुर्गावती का जन्म मध्य प्रदेश के महोबा नामक स्थान पर सन 1524 में हुआ था। उसके पिता कीर्ति सिंह कारंजर के राजा थे। दुर्गावती अभी छोटी ही थी कि उसकी मां का देहांत हो गया। पिता ने उसे बचपन से ही घुड़सवारी और अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी और ये देखकर बहुत खुश होते कि उनकी बेटी राजनीति और शासन की समस्याओं को सुलझाने में भी उतनी ही कुशल थी जितनी तीर चलाने में। एक बार की बात है,

शाबाश शाबाश मोती शाबाश, आज तुमने खूब साथ दिया। हाँ मैं जानती हूँ कि तुम थक गए हो, तुम्हें प्यास भी लग रही है।

0: पर क्या करूं, तुम तो शिकार के पीछे इतना तेज दौड़े कि अपने सब साथी पीछे छूट गए। चलो कुछ देर यहीं आराम करते हैं, तब तक बाकी लोग भी आ जाएंगे। ये लो, कुछ लोग तो शायद आ ही पहुंचे। अरे ये क्या, ये तो हमारे साथियों में से कोई नहीं। इसके कपड़ों से तो लगता है कि ये कोई मुगल सरदार है।
1: माशाल्लाह, ऐसी खूबसूरत लड़की और वो भी इस बयाबान जंगल में।
0: आपने मेरा रूप तो देखा, पर शायद ये नहीं देखा कि मेरे हाथ में तीर कमान भी है।
1: जी हाँ देख रहा हूँ, पर सच पूछिए तो आप जैसी हसीन लड़कियों के हाथ में तीर कमान शोभा नहीं देते।
0: बस बस वहीं खड़े रहो, शायद तुम नहीं जानते कि मैं कालंजर की राजकुमारी दुर्गावती हूँ।
1: अखा, तो आप ही हैं राजकुमारी दुर्गावती। अरे वाह, जैसा सुना था वैसा ही पाया। अरे आपकी सुंदरता और बहादुरी के किस्से तो दूर दूर तक फैले हुए हैं। इस इलाके के सभी राजे रजवाड़े आपको पाने की हसरत रखते हैं। ज़हे नसीब जो आपके दीदार हुए। अब जरा
0: फिर आगे बढ़ रहे हो, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? कौन हो तुम?
1: मैं आसिफ खान हूँ, कड़ा का सूबेदार। आपको अपनी मलिका बनाना चाहता हूँ, और आज जब ऐसा सुनहरी मौका हाथ आ ही गया है तो अभी आपको अपने साथ ले जाऊंगा।
0: जरा हाथ तो लगाकर देख आसिफ खान, तूने दुर्गावती का रूप देखा, अब दुर्गा का रूप भी देख।
1: अच्छा वाह, और
0: हाँ तो आसिफ खान, अब जरा अपनी बात दोहराओ। मेरी तलवार तुम्हारा लहू चखने को बेचैन है।
1: मुझे माफ कर दीजिए राजकुमारी जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। आप तो मेरी बहन जैसी हैं।
0: ठीक है, पर आइंदा कभी किसी लड़की पर बुरी नजर मत डालना, वरना इस देश की बेटियों को दुर्गा और चंडी बनते देर नहीं लगती।
1: अजी मेरी तौबा, जो अब किसी की तरफ आंख उठाकर भी देखूं।
0: चल बेटा मोती।
1: आज की इस बेइज्जती को मैं कभी नहीं भूलूंगा दुर्गावती। तुमसे आज की हार का बदला ना लिया तो मेरा नाम भी आसिफ खान नहीं।
2: एक बार दलपरचाह ने राजा कीर्ति सिंह को शिकार खेलने के लिए मनियागढ़ के जंगलों में आने का निमंत्रण दिया। शिकार की शौकीन दुर्गावती भी साथ गई। दलपत शाह इस साहसी युवती पर मुग्ध हो गए और उसे अपनी पत्नी बनाने का निश्चय कर लिया। दोनों का विधिवत विवाह हुआ। डेढ़ वर्ष बाद दुर्गावती ने एक पुत्र को जन्म दिया। बालक का नाम वीर नारायण रखा गया। लेकिन दुर्गावती के जीवन का यह सुख शांति का समय अधिक दिन नहीं रहा।
0: आधार सिंह जी, आप स्वर्गीय महाराज के मंत्री ही नहीं थे, आप उनके मित्र और चिंतक भी थे। आप ही बताइए मैं क्या करूं।
3: महारानी, आप स्वयं योग्य हैं, मैं भला आपको क्या सलाह दे सकता हूं। पर हां, इतना अवश्य जानता हूं कि स्वर्गीय महाराज अपने जीवन काल में बराबर राजकाज में आपसे सलाह लेते थे और आपकी राय की कद्र करते थे। वे ये कभी पसंद नहीं करते कि आप कायरों की भांति जीवन से मुंह मोड़ लें।
0: ठीक है आधार सिंह जी, घोषणा करवा दीजिए, कुमार वीर नारायण गोंडवाने के नए राजा हैं और रानी दुर्गावती आज से सिर्फ उनकी ही नहीं समस्त

0: उन राज्य की माता है।
1: राजमाता की जय, राजमाता की जय हो, राजमाता की जय हो।
2: रानी दुर्गावती ने शासन की बागडोर अपने मजबूत हाथों में संभाल ली। उसने किसानों को अधिक उत्पादन के लिए प्रेरित किया, उद्योगों को प्रोत्साहित किया, पानी की समुचित व्यवस्था के लिए कुएं और तालाब खुदवाए, पुराने कुओं की मरम्मत करवाई। वह राज्य के सभी भागों के अधिकारियों को बुलाकर उनकी समस्याओं के बारे में बातचीत करती और कभी कभी स्वयं भी दौरा करती थी। राजकीय कोष और सेना की रानी स्वयं देखभाल करती थी। उसके कुशल शासन में गोंडवाना एक संपन्न राज्य बन गया। दिल्ली के मुगल बादशाह अकबर ने गोंडवाना पर अधिकार करना चाहा। आसफ खां के नेतृत्व में मुगलों की बड़ी भारी फौज गोंडवाना की ओर चल पड़ी। रानी पहले से सतर्क थी। आक्रमण हुआ। रानी की सेना बहुत बहादुरी से लड़ी। कई मोर्चों पर तो उसकी जीत भी हुई। लेकिन रानी के एक पुराने शत्रु रेवतीगढ़ के राजा सुधार सिंह ने धोखा दिया। सुधार सिंह साधु के वेश में इधर उधर फिरता और जासूसी करता। उसी ने अकबर को गढ़ा पर हमला करने के लिए प्रेरित किया था। इनाम जागीर पाने के लालच में वो इधर की खबर उधर पहुंचाया करता था।
3: अलख निरंजन।
4: साधु बाबा।
3: अब अच्छा,
4: यहाँ कहाँ घुसे चले आ रहे हो? ये रानी दुर्गावती का किला है, साधुओं का जमघट नहीं।
3: अरे वो तो हम भी जानते हैं बच्चा, लेकिन साधु तो रमता राम होते हैं, आज यहाँ कल वहाँ। अभी मुगलों की छावनी से चले आ रहे हैं
4: क्या?
3: हाँ, बाप रे बाप, क्या लश्कर है बच्चा
4: है?
3: हाथी, घोड़े, तोप, बंदूक, बड़ा भारी इंतजाम है।
4: अच्छा,
3: हाँ
4: बहुत बड़ी फौज है।
3: और नहीं तो क्या बच्चा, अरे मुगल लोग जब चूहे के शिकार पर भी निकलते हैं ना, तो शेर के शिकार की तैयारी करके चलते हैं। और फिर यहाँ, अरे यहाँ तो रानी दुर्गावती से मुकाबला है, बड़ी जबरदस्त तैयारी करके निकले हैं बच्चा।
4: तो हमारे यहाँ भी जबरदस्त तैयारी है बाबा।
3: अच्छा,
4: रानी माँ ने रसद, पानी, हथियार सबका ऐसा बंदोबस्त किया है कि मुगल साल भर भी घेरा डाले पड़े रहे तो भी गढ़ में किसी चीज की कमी नहीं होगी।
3: हैं? क्या कहते हो बच्चा, साल भर का इंतजाम है?
4: बिल्कुल है।
3: और भगवान ना करें कोई हारी बीमारी ऐसी हो जाए कि बाहर निकलना जरूरी हो जाए तो?
4: उसका भी इंतजाम है।
3: अरे हटाओ, बाहर मुगल फौज घेरा डाले पड़ी हो तो तुम्हारी रानी भला क्या इंतजाम कर देगी?
4: देखो है? तुम्हें बताने में कोई हर्ज नहीं, पर किसी और से ना कहना।
3: नहीं नहीं बच्चा, किसी से नहीं कहेंगे।
4: हाँ, हमारे महल से एक गुप्त सुरंग शहर के बाहर वाले बगीचे तक जाती है।
3: गुप्त सुरंगों का पता तुम्हारे जैसे मामूली सैनिकों को कैसे पता चलेगा? यूं ही डींग मार रहे हो तुम।
4: यूं ही डींग नहीं मारता साधु महाराज, मैं बदन सिंह हूँ, बदन सिंह, रानी माँ का खास सेवक। इतना सा था जब मुझ अनाथ को रानी माँ ने सहारा दिया था।
2: पुरुष वेश में लड़ रही रानी के बहादुरी देखकर मुगलों के छक्के छूट गए। मुगल सैनिक जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। दूसरे दिन फिर घमासान युद्ध हुआ। वीर नारायण घायल हो गए थे, उन्हें रण

0: भूमि से दूर चौरागढ़ भेज दिया गया। रानी हाथी पर बैठकर लड़ रही थी कि तभी
1: क्या हुआ रानी माँ? अरे आपकी कनपटी में तीर लगा है माँ।
2: ओ मेरा ध्यान छोड़ गनू, तू हाथी को संभाल।
1: हाथी को क्या संभालूं रानी माँ, ये तो पहले ही भालों से छिप चुका है। अब तो कुछ देर संभला रह सके तो बड़ी बात है, लेकिन आप कितना खून बह रहा है।
2: ये खून तो वीरांगनाओं का आभूषण है गनू।
3: रानी माँ देर न कीजिए, आप मेरा ये घोड़ा लेकर यहाँ से शीघ्र निकल जाइए। चौरागढ़ में राजा साहब भी हैं, वहीं जाना ठीक रहेगा।
2: अब इसका समय नहीं रहा आधार सिंह जी, मुगल सैनिक चारों ओर से घिरते आ रहे हैं। आसिफ खान से मेरा पुराना बैर है, उसके हाथों अपनी दुर्गत कराने से अच्छा है आप अपने हाथों मेरा अंत कर दें।
3: नहीं नहीं रानी माँ, नहीं, ये पाप मुझसे नहीं हो सकेगा, इसकी आज्ञा मुझे मत दीजिए रानी माँ।
2: अच्छा तो गनू बेटा, ला तू अपनी कटार मुझे दे।
3: रानी माँ
1: मेरी कटार से अपने प्राण लेकर तुम मुझे इस तरह पापी नहीं बना सकती माँ। मैं तुम्हारा महावत हूँ, तुम्हारे साथ ही रहूंगा।
4: आशुताओं, इसी के साथ अब हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार।
6: उमंग उमंग उमंग उमंग
7: এতক্ষণ শুনলেন বিজ্ঞাপন দাতা দ্বারা আয়োজিত অনুষ্ঠান আকাশবাণী মুর্শিদাবাদ।

0: অনুরোধের আসর আজ এই পর্যন্ত। আকাশবাণী মুর্শিদাবাদ। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই শুনবেন আকাশবাণী দিল্লি কেন্দ্রের হিন্দি এবং ইংরেজিতে সংবাদ।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে সর ফিরোজি। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे।
2: हजारों की तादाद में यात्री इस समय धार्मिक उत्साह के साथ पवित्र गुफा में भगवान शिव के आशीर्वाद लेने और शिवलिंग के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यात्रा के दोनों रास्तों पर यात्रियों को पानी, भोजन और विश्राम स्थल उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि इस कठिन यात्रा के दौरान उनकी सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उत्साहित यात्रियों ने सुविधाओं और व्यवस्थाओं की सकारात्मक प्रशंसा की है। इस बीच आज सुबह जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी करके यात्रियों से निवेदन किया है कि वो केवल अपनी पंजीकृत तिथि पर ही यात्रा का आरंभ करें। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं रेश बाक्षा।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि अमरनाथ यात्रा देश की आध्यात्मिक विरासत और उसकी आस्था को रेखांकित करती है। तीर्थयात्रियों को लिखे एक पत्र में श्री मोदी ने

0: श्रीमती सीतारामन ने फ्रांस की कंपनियों और निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस एआई के क्षेत्र में भरोसेमंद साझेदार हैं। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल वहां प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। वेनेजुएला स्थित भारतीय दूतावास ने कहा कि दक्षिण अमरीकी देश में भारत के मानवीय राहत प्रयासों को जनता से इसकी सेवा की गुणवत्ता के लिए व्यापक प्रशंसा मिली है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स ने 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। 24 जून को देश में आए जबरदस्त भूकंप में मरने वालों की संख्या लगभग 2,595 हो गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोलकाता के न्यू टाउन कन्वेंशन सेंटर में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने कहा कि बंगाल को 2047 तक विकसित बनाने के लिए काम किया जा रहा है।
1: बंगाल की विरासत जो गौरवपूर्ण है, उस विरासत को भी पुनर्जीवित करते हुए आधुनिकता के समय नए युग की तरह 2047 तक विकसित भारत के सपनों को साकार करने के लिए बंगाल को विकसित बनाने का, बंगाल को सांस्कृतिक पुनर्जागरण, बंगाल को उद्योग व्यापार की दृष्टि से बेहतर बनाना, समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को बदलने के लिए आप सब मिलकर काम करेंगे।
0: उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि पिछली राज्य सरकार के दौरान लोकतांत्रिक व्यवस्था और विधायी प्रक्रियाएं पूरी तरह ध्वस्त हो गई थी। आज बंगाल की जनता ने मतदान के माध्यम से स्थिति बदल दी है। फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। 7 जुलाई मंगलवार को उसका मुकाबला कोलंबिया या घाना से होगा। और मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल तक मूसलाधार बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आंधी तूफान के साथ बिजली गिरने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi has described the annual Amarnath Yatra as an eternal chapter in the spiritual tradition and cultural unity of the country. He said the divine darshan of Baba Barfani is an unforgettable and deeply auspicious experience in the lives of millions of devotees. He also extended his greetings to devotees undertaking the annual Amarnath Yatra in Jammu and Kashmir. In a letter written to the pilgrims, the Prime Minister also urged devotees to take 5 resolutions during the pilgrimage. These include maintaining cleanliness throughout the yatra, strictly following all safety and administrative guidelines, supporting the local economy by spending at least 10% of their travel expenses on local products under the Vocal for Local initiative, gifting a sapling to a sibling on Raksha Bandhan to promote the Ek Peer Ma Ke Naam campaign, and carrying the spirit of nation first by performing their duties with honesty and contributing to the vision of a Vikasit Bharat. Meanwhile, the annual Sri Amarnath Ji Yatra, which began officially this morning, is proceeding smoothly from both Nunwa and Pahalgam and Baltal routes. Finance Minister Nirmala Sitharaman has said the India-France strategic partnership is well placed to drive the next phase of sustainable, resilient and innovation-led growth. Addressing the India-France Business Roundtable in Paris, she said the global economy is undergoing rapid transformation due to technological advances, supply chain diversification, energy transition and geopolitical developments. The finance minister invited French businesses and investors to partner with India in its journey towards Viksit Bharat 2047. She called for strengthening the India-France strategic partnership to achieve shared prosperity. She said India and France are trusted partners in shaping the global AI ecosystem.

0: अंतराल हुआ खत्म, तो जानते हैं अब किस सखी का लगने वाला है कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: मैं गुजरात बड़ौदा से सुहाना बात कर रही हूँ मैडम।
0: सुहाना, क्या बात है, गुजरात से अभी एक और कॉल आया था। आप बताइए क्या चल रहा है जीवन में, कैसी हैं आप?
1: जी मैडम, अभी तो जीवन में सब ठीक ठाक है। बरसात आता है नहीं आता है, बरसात नहीं आता है अभी, गर्मी बहुत है।
0: सुहाना जी देखिए, प्रकृति का नियम है, इतनी गर्मी हमने सही है ना, तो बरसात तो अवश्य आएगी, है ना?
1: मुझे बहुत तसल्ली ले रही है और मुझे आपसे बात करने की भी बहुत खुशी लग रही है मैडम। पहली बार बात कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मैडम
0: जी। हम आपकी खुशी
1: बयां नहीं कर सकती
0: जी, आपकी खुशी को हम बिल्कुल समझ रहे हैं और हमें भी उतनी ही खुशी है जितनी सुहाना आपको खुशी है। तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैडम आपके पसंद का कोई भी गीत सुना दीजिए।
0: चलिए तो सुनते हैं ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: जी मैं सुशीला महेश्वरी बोल रही हूँ भोपाल से।
0: सुशीला महेश्वरी भोपाल से?
1: जी
0: सुशीला जी, कैसी हैं आप?
1: मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं?
0: बिल्कुल अच्छे हैं, और आपसे बात हो पाई है तो और अच्छे हो गए हम। अपने बारे में कुछ बताइए सुशीला जी।
1: हाँ मैं घर में रहती हूँ, आपके प्रोग्राम सुनती हूँ।
0: तो विविध भारती के कार्यक्रम पसंद हैं आपको?
1: हाँ जी, और आप लोग की सबकी आवाजें बहुत अच्छी लगती है मुझे।
0: जी विविध भारती से ये प्रेम ही है कि आप और हम जुड़े हुए हैं।
1: सबसे
0: और
1: पहला प्यार विविध भारती हमारे लिए, बचपन से सुनते आ रहे हैं और अभी तक सुन रहे हैं।
0: जी तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, तेरे प्यार से शुरू तेरे प्यार से खत्म।
0: जी
1: ये वाला गाना सुनना है मुझे।
0: जी बहुत सुंदर गीत है, तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: नमस्कार।
0: नमस्ते, किस सहेली से हमारी बात हो रही है?
1: मैं अंजू बोल रही हूँ, वाराणसी से।
0: वाराणसी से अंजू जी। अंजू जी, अपने बारे में कुछ बताइए।
1: वैसे मैं जयपुर की रहने वाली हूँ, पियर मेरा जयपुर है, शादी मेरी बनारस हुई है
0: जी।
1: बनारस में हूँ और एक तरह से गृहिणी
0: हूँ। तो देखिए ना, गृहिणी का काम भी कोई कम नहीं होता। सब तो अपने काम को लेकर के घर से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन पीछे घर को संभालना, घर को देखना, हर चीज़ की व्यवस्था करना, ये गृहिणी का काम होता है। अब ये भी बताइए मुझे अंजू जी, रेडियो सुनना पसंद है? आप विविध भारती सुनती हैं?
1: हाँ बिल्कुल, विविध भारती ही सुनती हूँ ज्यादातर।
0: एक मुझे बात बताइए, सुख और दुख, इसको आप किस तरह से लेती हैं?
1: सुख और दुख तो आना जाना लगा ही रहता है हर की जिंदगी में, लेकिन हाँ मैं एक पॉजिटिव नजरिया लेके चलती हूँ कि हाँ जब दुख आया तो सुख भी आएगा, सुख है तो दुख भी आएगा, ये पॉजिटिव नजरिया लेके चलती हूँ
0: जी
1: जिंदगी
0: जी। तो ये बात हम सबको समझने की और सीखने की है कि भाई अगर एक चीज आई है तो दूसरा भी आएगा, यानी कि दुख अगर आया है तो सुख भी आएगा, है ना जी। और अब जानना चाहते हैं आप कौन सा गीत सुनना चाहती है आज?
1: मैं दिल एक मंदिर का गाना है, हम तेरे प्यार में सारा आलम को बेचे।
0: चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली
1: हेलो सहेली
0: जी, कौन सी सहेली से हमारी बात हो रही है आज?
1: वैष्णवी पांडुरंग मोरे।
0: कहाँ से बात कर रही है वैष्णवी आप?
1: वारंगा फाटा, जिला हिंगोली।
0: वारंगा फाटा से। तो बताइए वैष्णवी, क्या करती हैं आप?
1: मैं पढ़ती हूँ।
0: वैष्णवी, आपने अभी कौन सी कक्षा की एग्जाम दी?
1: सेवन
0: सेवेंथ की।
1: हाँ।
0: कैसी हुई परीक्षा आपकी?
1: बहुत अच्छी हुई।
0: अरे वाह, बहुत बढ़िया। आपने जितने कॉन्फिडेंस से ये बोला ना, बहुत अच्छी थी। मतलब कि सारे पेपर्स आपने बहुत अच्छे से लिखे हैं, है ना? तो रेडियो
1: हाँ
0: सुनती हैं आप?
1: हाँ सुनती हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है। और पढ़ाई के अलावा मतलब रेडियो भी सुनती हैं, और क्या करती
1: हाँ,
0: हैं? क्या क्या शौक है आपके?
1: गाने गाने का भी शौक है, खेलने का भी शौक है।
0: कौन सा खेल पसंद करते हो आप?
1: खो खो।
0: खो खो खेलते हो? तो और भी आपकी सखियां होती होंगी जिनके साथ आप खेलती होंगी खो खो, है ना?
1: हाँ।
0: फिर घर आकर के शाम को अपना होमवर्क खत्म करना, पढ़ाई करना, ये सब चलता होगा। तो वैष्णवी बताओ, आज कौन सा गीत सुनना चाहती हो आप?
1: छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी।
0: तो चलिए सुनते हैं अनाड़ी फिल्म का, आपकी पसंद का ये गीत।

0: बात कर रही हैं विजया जी?
1: अभी तो मैं हैदराबाद में हूँ, लेकिन रहती हूँ मैं पूर्णिया बिहार में, बेटे के पास आई हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है। तो विजया जी अपने बारे में कुछ बताइए।
1: मैं पूर्णिया यूनिवर्सिटी में एचओडी के पोस्ट पर मैंने काम किया है। अब मैं 5 साल पहले, अब 5 साल पूरा हो जाएगा मेरा, मैं रिटायर हो चुकी हूँ, दर्शन शास्त्र की अध्यापिका रह चुकी हूँ।
0: दर्शन शास्त्र की प्रोफेसर आप रही हैं?
1: हाँ, और मैंने 42 वर्षों तक महाविद्यालय और यूनिवर्सिटी की सेवा की है, बच्चों को पढ़ाया है, बच्चों के साथ रही हूँ।
0: तो विजया जी मैं ये जानना चाहूंगी, आपने इतने सारे बच्चों को पढ़ाया होगा, आपने बहुत सारे अनुभव उस वक्त लिए होंगे, तो आपका क्या अनुभव रहा उस वक्त जब आप पढ़ाया करती थी, जब आप कार्यरत थी?
1: तो मेरा अनुभव ये रहा कि मैंने सिर्फ विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को स्टूडेंट नहीं समझा, उनको मैंने अपनी बेटी की तरह पढ़ाया, जितने बच्चे आते गए सबको, और मैं उनसे हृदय से जुड़ जाती थी। ये मेरी कमजोरी कहिए या जो कहिए
0: जी, ये तो कमजोरी हो नहीं सकती, ये तो ताकत है एक टीचर
1: और
0: की।
1: उनको शिक्षा देने के साथ साथ, पढ़ाने के साथ साथ मैं उनका पर्सनल प्रॉब्लम भी सुनती थी,
0: क्योंकि आप टीचर,
1: और उनका जो सॉल्व कर सकती थी मैं कोशिश करती थी उसके प्रॉब्लम को सुनूं और उसको उस तरह से मुक्त रखूं जो उनके दिमाग में चल रही है बातें, घर को लेके, अपने माता पिता को लेके, ताकि उसका पढ़ने में मन लग सके, वो अपने आप को कंसंट्रेट कर सके पढ़ाई। हाँ, ये हुआ मेरे साथ। मैंने बच्चों को समय भी दिया, सिर्फ पढ़ाया नहीं
0: जी,
1: और मुझे इसका संतोष है कहीं ना कहीं।
0: बहुत अच्छी बात है, संतोष ही परम धन कहिए या सुख कहिए। साथ में मैं ये भी पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आप दर्शन शास्त्र की शिक्षिका हैं, तो सुख और दुख को आप किस तरह लेती हैं?
1: तो मेरा ऐसा मानना है कि हम लोग ज्यादातर संवेदनाओं के स्तर पर जीते हैं
0: जी,
1: खुशियों के क्षण में भी हम अपना आपा खो देते हैं और दुखों के पल हमें छिन्न भिन्न कर डालते हैं
0: जी,
1: इतना तोड़ डालते हैं कि ताउम्र हम उसके आघात से उबर नहीं पाते
0: जी।
1: सुखों के क्षणों को तो हम भुला देते हैं लेकिन दुख हमारी अंतरात्मा तक झकझोर जाता है
0: जी।
1: अब यहाँ पर मैं रुक कर सोचती हूँ कि सुख दुख के झंझावातों में हम खुद को कैसे नियंत्रित रख सकें।
0: जी, यही हम जानना चाहते हैं और हमारे सखियां भी अवश्य जानना चाहती होंगी कि जब अति कठिन परिस्थितियां आए या बहुत ज्यादा खुशी के पल आ जाएं, तो अपने आप को एक बैलेंस बना के कैसे रखें, और जो आप बताना चाह रही है ना कि नियंत्रण कैसे करें, वो भी बताइए।
1: हाँ, नहीं ठीक है। तो मेरा मानना है हम लोग सब स्थित प्रज्ञ तो नहीं हो सकते ना, लेकिन हमारा अनुभव कहता है कि न सुख शाश्वत है और न दुख
0: जी।
1: थोड़ा सा हम तटस्थता का अभ्यास करें, न्यूट्रलिटी का, पर न्यूट्रल हो जाए अगर कुछ क्षण के लिए, और यह समझ लें कि सुख और दुख हमेशा नहीं रहेंगे। आज दुखों की घड़ी आई है तो कल सुख भी हमारे द्वार पर आएगा
0: जी, यानी ये पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाना चाहिए,
1: अपनाना होगा, और जीवन तो निर्झर की तरह बहता ही चला जाएगा और सुख दुख तो उसकी हिलोरे हैं
0: जी। बिल्कुल सही, आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में सुख और दुख की परिभाषा समझाने की कोशिश की है विजया जी। तो विजया जी बताइए कौन सा गीत सुनना चाहती हैं आज आप?
1: ममता फिल्म का, रहे न रहे हम महका करेंगे, बनके गली बनके सभा बागे वफा में।
0: तो चलिए सुनते हैं ये आप ही की पसंद का सुंदर गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: किससे बात हो रही है हमारी?
1: शांति राजपूत से जी।
0: कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: जबलपुर
0: जी। शांति जी बताइए, कैसी हैं आप?
1: ठीक हैं जी मैम, आप कैसी हो?
0: बिल्कुल अच्छे हैं। और हाँ। क्या चल रहा है इन दिनों, क्या कर रही हैं आप?
1: कुछ नहीं मैम, घर में रहते हैं, घर ही का काम, खाना पीना, घर हाउस वाइफ से घर ही रहते हैं, कुछ
0: जी।
1: नहीं। हाँ।
0: हमारी कई सखियां कहती हैं कि हम कुछ नहीं करते हैं, हाउसवाइफ हैं, लेकिन हाउसवाइफ का भी काम बहुत अहमियत वाला होता है। हर काम, हर चीज आपको देखना होता है, हमें देखना होता है ना जी। घर के काम के अलावा और क्या करना पसंद है आप?
1: और मैं विविध भारती के रात में भी सुनती हूँ, 12-1 बजे लोग सब कार्यक्रम, दोपहर में भी सुनती, सुबह भी सुनती हूँ, बहुत अच्छा लगता है मेरे।
0: यानी कि घर के काम करते करते आपका रेडियो चलता
1: हाँ,
0: रहता है?
1: मैं चालू कर लेती हूँ मोबाइल से और सुनती रहती, काम भी करती रहती।
0: हाँ, तो मन प्रसन्न रहता है और काम भी होता रहता है ना?
1: हाँ जी।
0: जी, तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैं दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, निकाह पिक्चर का।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद
1: हाँ
0: का ये गीत।

0: हेलो सहेली में आज बातों का सिलसिला बस इतना ही। सखियों, आज हमने जाना जीवन के दो पहलुओं के बारे में, यानी सुख और दुख के बारे में। कई सारे जज्बात यहाँ पे साझा हुए, कुछ हुई मन की बातें, आप भी शेयर कर सकती हैं अपने दिल की जुबान। हेलो सहेली में रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार सुबह 11 बजे से। कॉल करने के लिए नंबर नोट कर लीजिए, हिंदी में 02240024662, अंग्रेजी में 02240024662। एक और नंबर है 02228670288, अंग्रेजी में 02228670288, 022 मुंबई का STD कोड है। हेलो सहेली कार्यक्रम में आज जिन सखियों के कॉल लगे हैं उनसे अनुरोध है कि आप अगले 2 महीने के बाद ही कॉल करें, ताकि अन्य सखियों को कॉल करने का अवसर मिल सके। आज के हेलो सहेली में तकनीकी रूप से हमारी सहयोगी रही भावना सिंदल, संपादन में हमें सहयोग मिला नम्रता टिकोड़े का, विविध भारती की ओर से प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आप सभी को दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज हम आपको सुनवा रहे हैं मनीष वैद्य की कहानी सुनहरी पूंछ वाला अमर पंछी। वाचन स्वर ममता सिंह का है।
2: प्रेम परछाई है, नहीं वो नदी के तटों की तरह है, कभी न मिल पाने को अभिशप्त। प्रेम हमारे भीतर के नमक की तरह है, नहीं प्रेम तेजाब की तरह है, भीतर तक सब कुछ खत्म कर देने वाला। प्रेम कोमल अनुभूति है, नहीं वो विद्रोह का उद्घोष नाद है। लड़की के मन में खलबली मची है, उसके चारों तरफ घुप अंधेरा है। भीतर के अंधेरे में घुल रहा है बाहर का अंधेरा, वो उस अंधेरे की आदी थी। वो इसे जानती थी, वो अंधेरे से नहीं डरती थी, वो किसी से नहीं डरती थी। वो नदी से मछलियां ले आती, शिकार करती और गोफन तान कर ऊंचे पहाड़ों से फल गिरा लेती। नदी की धार के खिलाफ तैरती हुई मछलियां उससे पीछे छूट जातीं। वो अलबेली अल्हड़ चुलबुली और अपनी ही धुन की थी, बाकी लड़कियों से बिल्कुल अलग। उसकी सहेलियां भी उसकी तरह नहीं थीं, थोड़ी थोड़ी करीब, फिर भी उनकी आपस में दोस्ती थी। उसकी सबसे अच्छी दोस्ती अपनी नानी से थी। नानी थी भी ऐसी, उम्र का फासला उनकी दोस्ती में कभी बाधा नहीं बनता। कभी नानी उसकी उम्र की हो जाया करती तो कभी वो नानी की उम्र में दाखिल हो जाया करती। वो बचपन से ही नानी के पास रहती थी। उसके माँ पिता कई साल पहले चल बसे थे, तब वो बहुत छोटी थी, इतनी कि उसे ठीक से अपने माँ पिता का चेहरा भी नहीं याद। नानी के गांव के ठीक पीछे पहाड़ था, इतना पास

बस कि जैसे गांव उसकी गोद में हो। पहाड़ से कूदती फांती नदी गुस्से में बहुत तेजी से बहती तो कभी मंद मंथर सी थकी मांदी किसी बुढ़िया की तरह।

रात चीते नाहर की गुर्राहट भरी दहाड़ सुनाई देती तो कभी रीछ की आवाजें, पर ये लोग उन आवाजों से डरते नहीं थे। वो गांव भी नहीं था, गांव जैसा कुछ था। गांव में बहुत से मकान होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं और वे खेती या दिगर काम करते हैं। वहां कुछ दुकानें होती हैं, स्कूल अस्पताल जैसे सुविधाएं भी हो सकती हैं, पर वो ऐसा नहीं था। वो छोटी सी बस्ती, कुल 20-22 टपरियां होंगी और 100 के करीब लोग। किसी फलिए की तरह गांव बाकी दुनिया से खोया हुआ था। हाँ, सरकारी नक्शे में ज़रूर जंगल के बीच सुई की नोक की मानिंद था। नदी से कुछ दूरी पर पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटे से ओटले पर पत्थर की एक मूर्ति थी। गांव के मंदिरों और दीगर जगहों पर अमूमन कई मूर्तियां हुआ करती हैं, पर ये उन मूर्तियों से बिल्कुल अलग थी। ये एक औरत का बुत था, वो देवी की तरह नहीं थी। देवी की मूर्तियों के हाथों में हथियार या फूल जैसी चीज़ें होती हैं। ये पत्थर की औरत उसी तरह थी जैसे यहाँ की दूसरी औरतें। बुत में वो मुस्कुराती हुई दिखती, मानो कुछ ही पलों में खिलखिलाकर हंस पड़ेगी। किस राम के इंतजार में है ये पत्थर की अहिल्या? उस लड़की के लिए वो बुत बचपन से ही किसी रहस्य की तरह था। गांव में कोई शादी करके लौटता है तो नए जोड़े को सबसे पहले यही लाया जाता। लाल ध्वजा, घी का दिया, ताजे फूल, अगरबत्ती का धुआं, लोबान का धुआं, नारियल, दानी चुनरी, ढोल ढमाकों के साथ सब यहाँ पूजा करते हैं। उनके साथ औरतों का हुजूम होता। उसने नानी से कई बार पूछा था, नानी हमेशा ही उसे टाल दिया करते। उसे नानी ने कई कहानियां सुनाई, पर ऐसा क्या था इस कहानी में कि उस बुत की बात आते ही वो डरने लगती। किसी अनहोनी की आशंका में उसकी आंखें फटने लगती। नानी उसे बच्चों की तरह अपने अंक में भर लेती और उसके बालों में अपनी उंगलियां घुमाती रहती जब वो डरती। वे शायद तब किसी तूफान से गुजर रही होती, सूखी नदी में तपती रेत का दरिया पार कर रही होती। चंदा नाम था उसका। नानी ने पहली बार उसे देखा था तो सहसा ही ये नाम उसके मुंह से निकल आया था, उसके लिए अतखिला चांद का टुकड़ा। इस तरफ काले लोगों और अंधेरों के बीच रहने वाली नानी को उसकी कंचन सी देह से नया उजाला दिखा था। तब नानी उसकी कंचन काया से डरी थी। उसकी माँ को कहा था, ज्यादा अटोपनी पड़ेगी इसे, सुंदर लड़कियां माँ बाप के लिए परेशानी का सबब होती हैं। हाँ, उसके आने पर आधी रात पीतल की थाली बजाई गई थी। अंधेरी रात में दूर तक थाली की आवाज गूंजती रही। नानी को तब क्या मालूम था कि आगे चंदा को उसे ही अटोपना पड़ेगी और उसे ही अतिरिक्त सावधानी भी रखनी होगी। चंदा धीरे धीरे बड़ी हो रही थी और उसके अनुपात में नानी की चिंताएं भी बढ़ने लगी थीं। नानी कहती, ये दूसरों की अमानत है, इसका शादी ब्याह हो जाए तो मेरी चिंता खत्म, फिर मैं चैन से मर सकूंगी। उसने बचपन से बस नानी को ही देखा था, वही उसके लिए माँ बाप थी। उसने अपने बचपन की सारी चाहतें नानी को ही पूरे करते देखा था। नानी कभी उस पर चिढ़ जाती तो कुढ़ने लगती, ताड़ सी लंबी हो चली है पर अक्कल बच्चों जैसी, जब देखो घोड़ी जैसी दांत पिलकाती रहती है, उलल बछेरी कहीं की, सारा दिन यहाँ वहाँ घूमती रहती है। अरे जमाना बहुत खराब है, कल को कुछ हो गया तो कहाँ मुँह छुपाऊंगी मैं। पर नानी की डांट जैसे ठंड की धूप, भीतर ही भीतर उसमें अपनेपन की गुनगुनी आँच होती है। नानी।

वो नानी को जैसे तैसे मना ही लेती। कुछ ही पलों में नानी भी भूल जाती तो उसे कब याद रहता। उम्र बढ़ने के साथ लड़की की देह से चंदन की खुशबू का सोता फूटने लगा। वो चंपा की तरह लरजती थी, तितलियों की तरह हल्की होकर फूलों के कानों में कुछ कहती तो वे खिलखिलाने लगते। वो नदी के पास जाती तो नदी उससे अटखेलियां करने लगती। पहाड़ की ओर जाती तो उसकी घाटियों में रंग बिरंगे फूलों का गुलिस्ता खिल उठता। वो खिलखिलाती और हर सिंगार झड़ने लगते। उसकी सांस की लय पर पेड़ सरसराने लगते। वो पूरब की ओर देखती तो धूप खिल उठती। वो जंगल की भाषा जानती थी और जंगल उसकी भाषा पहचानता था।

नानी से कहानी सुने बिना कोई रात वो सोती नहीं थी। नानी गजब की किस्सा गो थी। किस्सा गो उनकी तासीर में थी। वो ऐसे सुनाती कि चित्र चलने लगते। वे उस समय में दाखिल हो जाया करती मानो किरदार खुद अपनी बात कह रहे हों। नानी की कहानियाँ जैसे उसकी लोरी थी। नींद की घाटियों में वो उन किरदारों के बीच बहती रहती, घूमती रहती। वे किरदार सपनों में अक्सर उससे बातें किया करते। कई बार ये भी होता कि किरदार उसके भीतर इस तरह बस जाते कि वो उनके प्रभाव से बहुत दिनों तक बाहर ही नहीं आ पाती। तब वो बेचैन सी नदी के तट पर जा बैठती, जैसे नदी से कुछ पूछ रही हो। गुमसुम सी, अनमनी और उदास, भीतर ही भीतर सुलगती हुई घंटों तक इसी तरह बैठी रहती। नानी की कहानी सुनने से पहले दो शर्त होती। शर्त नहीं तो कहानी नहीं। चंदा हर बार ये शर्तें मानती। पहली शर्त थी हुकारा, मतलब हाँ में हाँ मिलाते चलो। जब वे कहानी कहती तो जरूरी था कि सुनने वाला कुछ देर में हाँ हाँ कहता रहे। वे कहती कि हुंकारा टूटा तो कहानी की डोर भी टूटी।

नानी अक्सर छोटी कहानी सुनाती थी, पर कभी कभी कहानी लंबी हो जाती। नानी कहती कि ये उसके हाथ में नहीं है कि किसी कहानी को कहाँ खत्म

करें, ये तो किरदार ही तय करते हैं। कहने वाले का उन पर कोई जोर नहीं चलता। कहानी सुनते हुए वो अक्सर नानी के देह के स्पर्श की आँच महसूस करती और इस आँच में नानी की तरह वो भी घुलने लगती। नानी की देह में नमक सी खुशबू थी जो उनके किरदारों में से उनमें आई होगी। लोक कथाएं हो या सीता, उर्मिला, मंदोदरी, अहिल्या, द्रौपदी, कुंती, गांधारी, राधा और मीरा की कहानी, इनके प्रेम और इनसे किए छल की कहानियाँ नानी इस अंदाज में सुनाती कि जैसे इनके दुख उसने अपने ही कलेजे में छुपा रखे हैं। वे कहती किसी समय में स्त्री मुक्त नहीं रही, न तब और न अब, हर दौर में उसे आग से ही गुजर कर परीक्षा देनी पड़ी। हाँ, यही उसका भाग है, उसे हमेशा प्रेम की जगह छल ही मिला। फिर भी उसने प्रेम का अंकुर कभी सूखने नहीं दिया। अपनी आत्मा को आंसुओं की नमी और दुखों के ताप से उर्वर बनाए रखा। आषाढ़ के आखिरी दिनों की कोई रात रही होगी, ताप और उमस से भरी हुई, हवा जैसे कहीं थम गई थी। आंगन के ऊपर आसमान में तारे ही तारे थे। नानी उस रात उसे उर्वशी पुरुरवा की कहानी सुना रही थी, ईसा से 1600 साल पुरानी कहानी, पुराणों की पहली कहानी, आज से करीब 3500 साल पुरानी। नानी कहानी सुना रही थी। स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा थी उर्वशी। उर्वशी के पास सब कुछ तो था, लेकिन ऐसा सरल जीवन और मनोरम प्रकृति कहाँ। स्वर्ग में नृत्य, संगीत और आकर्षण के स्थिर सपनीली दुनिया से अलग, यहाँ धरती पर राग रंग, जीवन संघर्ष, मौसमों की आवाजाही और प्रकृति का पल पल बदलना। उर्वशी को धरती हमेशा लुभाती थी। एक दिन वो धरती की सुंदरता देखने आई और जंगल की झील में अपना अक्स देखने में ऐसी खो गई कि शाम से पहले वापस स्वर्ग लौटना ही भूल गई। धरती के जंगल है ही इतने सुंदर कि कोई भी रम जाए इनमें। चंदा ने हुंकारा भरा, हाँ ये बात तो है, जंगल है ही इतने सुंदर। नानी ने कहानी को आगे बढ़ाया। तो शाम घिर आई, चांदनी रात में झील का सौंदर्य और बढ़ गया। उर्वशी के रूप गंध से जंगल महकने लगा। इससे केसी नाम के राक्षस का पुरुषत्व जाग उठा। उसने उर्वशी का हाथ पकड़ा और उसे जबरन ले जाने लगा। उर्वशी ने सहायता के लिए पुकारा। रात के नीरव सन्नाटे को चीरते हुए स्त्री का आर्तनाद जंगल में दूर दूर तक फैल गया। चंदा ने दोनों हथेलियां अपनी ठोड़ी पर रखते हुए पूछा, अरे फिर क्या हुआ नानी, कोई आया उसे बचाने? नानी ने अपनी आवाज को और भीतर तक ले जाते हुए कहा, हाँ थोड़ी दूरी पर पुरुरवा शिकार के लिए गुजर रहे थे। पुरुरवा एक प्रतापी राजा था, स्त्री और गरीबों का रक्षक। प्रतिष्ठानपुर का राजपाट होते हुए भी एकदम एकाकी। ओशिन सहित कई रानियां थीं, पर मन की बात कोई नहीं समझ पाती। राग रंग में मन नहीं लगता तो वो रात को शिकार पर निकल जाता। प्रेम से रीता इंसान कई बार लक्ष्यहीन हो जाता है। केसी राक्षस से भिड़ जाते हैं पुरुरवा और बचा लेते हैं उर्वशी को। चंदा ने चहकते हुए हुंकारा भरा, हाँ ये हुई ना बात नानी। नानी को इस तरह कहानी की शुरुआत में ही चंदा का फैसला देने वाला अंदाज ठीक नहीं लगा, पर वो भी आखिर के सागो थी। उसने अगले ही पल चंदा को फिर से बेचैन कर दिया। नानी ने आवाज बदली और वे कहने लगी, लेकिन यही आता है एक नया मोड़ जो बदलता है पुरुरवा और उर्वशी की जिंदगी को। केसी से छुड़ाने में कई बार पुरुरवा और उर्वशी का एक दूसरे से स्पर्श हुआ। दोनों के भीतर स्पर्श से तरंगित सितार के कई तार छिड़ गए। चांदनी रात के दूधिया उजाले में दोनों की आंखें मिली तो वे एक दूसरे की आंखों में कुछ ढूंढने लगे। बरसों की आस घुमड़ आई, अनायास बारिश होने लगी। उस रात दोनों

की बरसों से तपती अतृप्त देह अंधेरे और बारिश में एक होने को आतुर थी। दोनों की देह उस बियाबान में अकथ प्रेम की कहानी लिखती रही। चंदा ने हुंकारा देते हुए पूछा, हाँ तो फिर शादी हो गई दोनों की? नानी ने डपटते हुए कहा, अरे ऐसी आसान कहाँ होती है कहानियाँ चंदा। उर्वशी यहाँ धरती की नहीं, वो तो स्वर्ग की थी ना। नानी फिर शुरू हो गई तो सुबह पुरुरवा ने भारी मन से उर्वशी को स्वर्ग भेज दिया। दोनों रीते रह गए, भीतर ही भीतर कुछ खो गया। न पुरुरवा का मन धरती पर लग रहा था और न ही उर्वशी का मन स्वर्ग में। एक का धरती पर राजसी ठाठ बाट तो दूसरे का स्वर्गिक आनंद, लेकिन दोनों एक दूसरे के प्रेम में झुलस रहे थे, दोनों अनमने से।

अनमनी उर्वशी, नानी कुछ कहती इससे पहले ही एक तारा टूटकर जमीन पर आने लगा और नानी ने कहानी वहीं रोक

थी, चंदा शर्त से बंधी थी। वो कहानी के इस तरह अचानक बीच में रुक जाने से उदास हो गई, पर कहा कुछ नहीं। उसे पता था कि नानी अपनी शर्त कभी नहीं तोड़ती। अधूरी कहानी उसके भीतर देर तक घुमड़ती रही। नानी को तो नींद आ गई, पर उसकी आंखों में नींद कहाँ। वो सोने की जितनी भी कोशिश करती, हर बार निष्फल ही रहती। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। चांदनी रात में पीपल के नीचे ओटले पर वो औरत बुत की तरह मुस्कुरा रही थी। उसने सोचा, हर औरत एक बुत ही तो है। महज मुस्कुराती हुई, क्या सांस लेना और दिल का धड़कना ही जीवन है। चंदा सोचती तो सोचती रहती देर तक। कोई भंवर उठता उसकी आंखों की झील में, कोई बवंडर उठता उसके मन में, गीली लकड़ी सी धू धू करके उसकी देह सुलगने लगती।

वो इस वक्त आकाश की याद में है बड़ी शिद्दत से, मानो बीता हुआ सच अभी गुजर रहा हो उसकी आंखों के सामने। वो कहाँ होगा? क्या वो भी उसे याद करता होगा? पता नहीं। यही नदी के किनारे उन्होंने एक दूसरे को पहली बार देखा था। दोनों को नदी ने देखा था, पीपल की बुत वाली औरत ने देखा था, पहाड़ ने देखा था और जंगल ने भी। उसने उसे देखा तो वो देखती रह गई। ऐसा कोई इधर उसने कभी देखा नहीं। उसे लगा कि ये जंगल की कोई परी है, किसी ने तन्मय होकर तराशी है उसकी देह। बड़ी बड़ी आँखें, सुतवा नाक, लरसते से नाजुक होठ, सुराही का गला, काले बालों का लहरदार जूड़ा, लाल ओढ़नी, धानी घाघरा, जैसे वन देवी हो या राह में भटकी हुई कोई राजकुमारी। वो खो गया था। वो अब महसूस कर रही थी उसकी आंखें उसे भेद रही हैं, शायद भीतर आत्मा तक। उसकी आंखों में भी इंद्रधनुष तनने लगा था। सपनों से उसके जीवन में उतर रहा था प्रेम, धीरे धीरे अपने अंक में लेती हुई आज थी वहाँ। वो उस ताप से अपने में ही बिखर रही थी और वो फैल रहा था उसके वजूद में हौले हौले। चंदा तिल तिल आकाश के वजूद में समा रही थी। उसका अपना सब कुछ विलीन हुआ जा रहा था। प्रेम में दो हो ही नहीं सकते, वहाँ अद्वैत है। आकाश की तरह उसने भी चंदा को अपने में समेट लिया था। आकाश के बिना चंदा तो चंदा के बिना आकाश कैसा? वे प्रेम में थे या उनके साथ पूरी

आकाश जिसके वजूद में चंदा तिल तिल समा रही थी, वही आकाश दरअसल यहाँ जंगल बचाने आया था। कुछ लोग जंगल को ख़त्म कर देना चाहते थे। वो जंगल को उसी तरह रखना चाहता था जैसे जंगल बरसों से था। वो नदी में मछलियों की आवाजाही देखता रहा। चंदा के पैरों को छूते हुए नदी का पानी अपनी धार में बह रहा था। तब से अब तक न जाने कितना ही पानी बह गया होगा इस धार में, वो सोचने लगता है। स्मृतियां दुख से भर देती हैं, जख्म हरे हो जाते हैं। क्यों नहीं भूल पाते हम दुखद स्मृतियों को, मानो कहीं भीतर फंसी रह जाती हैं ये दुखद स्मृतियां। सपनों से जीवन में आया प्रेम कब फिर सपनों में लौट जाता है, हम समझ भी नहीं पाते। प्रेम दुर्लभ है, शायद हवा के वर्जित फल की तरह। कुसुम जो चंदा की प्रिय सहेली थी, शुरू से ही इसके खिलाफ थी, पहले दिन से। वो कहती थी प्रेम कुछ भी नहीं है, बस छलावा है, एक भरम है, एक बहाना है। दोनों नदी के तट पर इसी जगह बैठी थीं। चंदा ने कुसुम से हंसते हुए कहा, कुसुम तुझे वो कहावत याद है ना, झड़त पान हसत पीपली, झड़त पीपली हसत पान। मतलब, कुसुम ने पूछा था। चंदा बोली, अरे जब पतझड़ में सारे पेड़ पौधों के पत्ते गिरते हैं तो पीपल उन नंगे दरख्तों पर हंसता है, और जब सारे पेड़ पौधे पर नई कोपले आने लगती हैं तो छोटे छोटे पत्ते आने लगते हैं, तब पीपल के पत्ते झड़ने लगते हैं और सारे उस पर हंसते हैं। चंदा ने हंसते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाया। आज मैं प्रेम में हूँ तो तू मुझे ऊंच नीच समझा रही है, कल जब यही तेरे साथ होगा तब मैं। कुसुम ने बीच में ही बात काट दी। ऐसा कभी नहीं होगा चंदा, मैं नहीं पढ़ने वाली तेरी तरह प्रेम रेम के चक्कर में, चंदा ने चहकते हुए कहा था। पगली, कोई सोच समझ कर थोड़े ही प्रेम करता है, ये तो बस हो जाया करता है। प्रेम दिमाग से परे होता है, वो तो मन की किताब में कैद होता है। प्रेम मन में होता है, अनजाने में, जानबूझकर नहीं।

0: चलो चलो, प्रेम अंधा होता है, कुसुम ने कहा। नहीं कुसुम, प्रेम तो आंखें खोल देता है, चंदा बोली। हाँ, प्रेम संकीर्ण कर देता है, कुसुम बोली। नहीं रे, प्रेम तो संकीर्णता को तोड़ता है, प्रेम सारी हदें तोड़ देता है, प्रेम निस्सीम है, निस्सीम, चंदा बोली। प्रेम समझ को ही खत्म कर देता है, ये एक तरह का पागलपन ही है चंदा। प्रेम जीवन को नए अर्थ देता है, वो दो दिलों को जोड़ता है, ये तो एक अलग अनुभूति होती है। प्रेम हमारे पागलपन का उपचार है, दवा है, प्रेम दवा है। चंदा, प्रेम आग है, आग। कुसुम, आग भी तो जरूरी है ना जीवन के लिए, आग से ही तो अनाज पकता है, आग से ही लोहा ढलता है, आग से ही सोना तपता है। आग नहीं तो जीवन कैसा, हर सर्जन आग की भट्टी से ही तो उपजता है। चंदा, प्रेम अपनों से तोड़ देता है, समझी? नहीं रे, प्रेम किसी को नहीं तोड़ता। कुसुम, जो प्रेम को नहीं समझ पाते वे खुद टूट जाते हैं, प्रेम तो हमेशा जोड़ता ही है। चल हट, तुझसे तो बात करना ही व्यर्थ है चंदा। अरे सिर्फ प्रेम की बात पर ही ना कुसुम, बाकी बातों में तो नहीं। ऐसा इसलिए है कि तूने प्रेम को अब तक सिर्फ दूर से ही देखा है, दूसरों की नजरों से ही ना, उसमें डूबना तो दूर, तूने तो छुआ तक नहीं है, फिर उसके बारे में कैसे जान सकती है भला। चंदा उन पलों को शिद्दत से याद करती है तो उसके भीतर यादों की नदी मचलने लगती है, उसे अपने ही तन की खुशबू अब पराई सी लगती है। उसका पुरुरवा भी क्या उसे इसी तरह कहीं याद करता होगा? याद करता होता तो लौट आता अब तक। कभी कभी लगता है कुसुम सही कहा करती है, कभी लगता है उसका मन सही कहता है, अपने ही द्वंद्व में उलझी है वो, पर उसे भरोसा है अपने प्रेम पर, पूरा भरोसा है कि एक दिन लौट आएगा आकाश भी। चंदा और आकाश जब मिलते तो देर तक बातें करते रहते, उनकी बातें कभी ख़त्म नहीं होती थीं, उनके पास बातों का ख़जाना था। कभी वे बातें करते हुए जंगल में खो जाते तो कभी पहाड़ से उतरती नदी को देखते रहते। नदी का ये तट उन्हें सबसे अच्छा लगता, उनके पैर नदी के पानी में होते और इस तरह नदी प्रेम को सींचती थी, उनकी बातें नदी में गिरती रहती, नदी उन बातों के टुकड़ों को सहेज लेती, वे चिड़ियों से शब्द लेते, वे पपीहे से प्यास लेते और अपने प्रेम को गाढ़ा होते देख रहे थे।
1: ये रात

आकाश को बुत वाली औरत की कहानी उसने ही सुनाई थी। आकाश का हाथ पकड़कर वो उसे बुत के पास ले गई थी। बुत वाली औरत मुस्कुरा रही थी। आकाश, ये बुत देख रहे हो ना? ये बुत नहीं है, सच की औरत है, इसी गांव की। करीब 400 साल पहले यही इसका घर था। हर दिन नदी के पास की पगडंडियों से पहाड़ की ओर बकरियां लेकर ये निकल जाया करती थी। कभी वो बहुत मीठा गाती थी, पहाड़ पर गाती तो गांव सुनता रहता। उसके गाने में ताकत थी कि गीत सुनते हुए कोई दूसरा काम नहीं कर पाता, जो सुनता वही ठहर जाता। उसकी आवाज़ में

दर्द था। उसके दर्द से भीगे गीत पहाड़ की घाटियों में गूंजते रहते देर तक। नदी के साथ बहते हुए गीत बहुत दूर तक चले जाते। आकाश हतप्रभ था। ऐसा गीत, ऐसा गला कहाँ से सीखा था उसने? अपने ही दुखों से, अपने ही भीतर से। यह कौन किसको सिखाता है? सब अपने ही भीतर सीखते हैं। कहते हैं वो गले से नहीं गाती थी, अपने कलेजे को ही चीर लेती थी वो। वहीं से फूटता था गीत। चंदा की आंखें बुत पर टिकी थी। ऐसा क्या दर्द था उसका? प्रेम का दर्द, जिसका कोई उपचार उसके पास नहीं था, कोई दवा नहीं थी उसके पास। फिर क्या हुआ? आकाश बेताबी से पूछ रहा था। उसने भी किसी से प्रेम किया था, कहीं से सौदा बेचने यहाँ आया और प्रेम लेकर चला गया। फिर बरसों तक इधर नहीं लौटा। वो उसका इंतज़ार करते रहे। इंतज़ार का दर्द सिमट आया था उसके गीतों में।

तो क्या वो फिर कभी नहीं लौटा? क्या वो उसे भूल गया? नहीं, वो उसे अपने देश, अपने गांव ले जाने को लौटा था, पर वो उसके साथ जाने को तैयार नहीं थी। उसे इस जंगल से इतना प्यार था कि कहीं जाने की बात कभी सोच भी नहीं पाती। हार कर सौदागर ने भी यहीं रहने का फैसला कर लिया। वो बहुत खुश हुई। वो संकोच में थी कि घर वालों को ये सब कैसे बताए। तभी एक किस्सा हो गया। किस्सा?

कैसे किस्सा? एक रात नदी के तट पर ठीक ही वे दोनों अपने सपनों में खोए हुए थे। तभी गांव के कुछ लोगों ने उन्हें यहाँ इस तरह देख लिया। थोड़ी ही देर में पूरा गांव इकट्ठा हो गया। इस तरह किसी गैर पुरुष के साथ? गांव वालों में से किसी एक ने किसी ने पहला पत्थर उछाला। फिर तो इतने पत्थर चले कि वहीं दोनों लहू लुहान हो गए। इतने पत्थर खाकर वे बचे नहीं, वे तो नहीं बचे, लेकिन उनका प्रेम जीत गया था जमाने से, अपने समय से।

उसके बाद गांव में जैसे मुर्दान की छा गई, संकट पर संकट, गांव वाले परेशान। संकट में ही याद आते हैं अपने किए हुए बुरे कर्म। ये उसी औरत की वजह से तो नहीं, पूरे गांव ने नाक घिसी यहां आकर। किसी मूर्तिकार ने उसकी मूर्ति गढ़ी पत्थर में, तब से अब तक इसे लोग देवी की तरह पूजते हैं। लेकिन कुंवारी लड़कियों को यहां नहीं आने देने के पीछे क्या वजह है? डर, प्रेम से। उन्हें लगता है कहीं वे भी प्रेम में न पड़ जाएं। कोई माँ अपनी बेटी को ये किस्सा तक नहीं सुनाती कि कहीं उसकी बेटी भी प्रेम न करने लगे। आकाश ने कहा था, तो क्या इन 400 सालों में कुछ भी नहीं बदला? बिल्कुल नहीं। शायद ये दुनिया का पहला ऑनर किलिंग रहा होगा। बहुत देर तक दोनों के बीच सन्नाटा सा रहा। वे भी धीरे धीरे पत्थर के शक्ल में ढल रहे थे। दूसरी रात नानी ने फिर शुरू की थी उर्वशी की कहानी, वहीं से जहां तारा टूटने पर छोड़ी थी। नानी कह रही थी, अनमने से उर्वशी नृत्य नाटिका में लक्ष्मी का अभिनय कर रही थी। उसके ध्यान में पुरुरवा थे। उसने नाटिका में जैसे ही विष्णु की जगह पुरुरवा कहा तो स्वर्ग में खलबली मच गई। नृत्य नाटिका के निर्देशक भरत मुनि ने उसे शाप दे दिया, तू जिसके प्रेम में है जा उसे ही वरण कर। वो प्रेम में थी तो उसे ये शाप भी वरदान ही लगा। उसने पुरुरवा के पास संदेश भेजा। पुरुरवा ने उसे धरती पर बुलवा लिया। गंधमादन की रमणीक पहाड़ी पर दोनों प्रेम में रहने लगे। अच्छा, इस तरह तो प्रेम जीत गया नानी, चंदा बोली। नानी ने कहा, सरल नहीं होती जिंदगी की राह बेटा, वो कई मोड़ मुड़ती है। हाँ, प्रेम को कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। अब आगे सुन। पुरुरवा उर्वशी के लिए फल लेने जा रहे थे कि जंगल में उसकी आंखें पल भर के लिए नदी से झुककर पानी भरती हुई एक युवती पर ठहर गई। पुरुरवा को बिना बताए उर्वशी भी थोड़ी दूर पर उनके पीछे चल रही थी। एक स्त्री सब कुछ सहन कर सकती है पर अपनी उपेक्षा नहीं। वो डाह से भर उठी और वहीं एक बेल में बदल गई। पुरुरवा परेशान,

सब तरफ देखा, ढूंढा, पर कहीं नहीं। पुरुरवा विरह से बहुत दुखी हुए। एक मुनि ने देखा तो दया से भरकर उन्होंने पुरुरवा को एक मणि दी, जिसके छूते ही उर्वशी फिर से स्त्री बन गई। वो बेल में नहीं बदली थी, शायद वो बेलों के पीछे अपने में ही छुप गई थी। नानी कहे जा रही थी, बहुत मनाने पर उर्वशी उसके साथ रहने को तैयार तो हो गई, पर उस बार उसने पुरुरवा के सामने शर्त रख दी। कैसी शर्त नानी? प्रेम में शर्त? भला कैसे? चंदा के माथे पर बल पड़ गए थे। नानी की कहानियां ऐसे ही कई मोड़ों से भरी होती हैं, उसकी अपनी जिंदगी की तरह। ऐसा लगता कि बस अब कहानी का सुखांत तो होता ही है, और तभी कोई एक नया मोड़ आ जाता उसमें। सुनने वाला अचरज में पड़ जाता है। नानी कहती, अरे मोड़ नहीं तो कहानी क्या? नानी ने कहा, हाँ प्रेम में शर्त। ये उसकी प्रेयसी बनकर तभी तो उसके साथ गंधमादन पहाड़ पर रहेगी, जब तक कि उनमें से कोई एक दूसरे को निर्वस्त्र नहीं देख लेते। जिस दिन दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे को बिना कपड़ों के देखा, उसी पल उर्वशी उससे संबंध तोड़कर वापस स्वर्ग चली जाएगी। तो क्या पुरुरवा ने शर्त मान ली? चंदा कहानी के भंवर में धंसती जा रही थी। नानी ने कहा, अरे वो क्या करता, वो तो उर्वशी के प्रेम में था, उसके पास कोई विकल्प नहीं था शर्त मानने के सिवा। उसने शर्त मान ली, अब वे दोनों उजाले में सामने नहीं पड़ते, पर रात के अंधेरे में दोनों एक दूसरे में खोए रहते। दोनों सुख से रहने लगे। राजपाट का काम भी पुरुरवा वहीं से देखते थे। वे बरसों तक अपनी राजधानी ही नहीं लौटे। फिर क्या हुआ नानी? क्या किसी ने उनके राज्य पर हमला कर दिया? चंदा की बेचैनी अब चरम पर थी। नानी ने कहा, अरे नहीं रे, पुरुरवा जैसे प्रतापी राजा के राज्य पर हमला करने की हिम्मत भला कौन करता? दूसरी बात हुई। उर्वशी के चले आने से स्वर्ग में उदासी फैल गई थी। नृत्य और संगीत बिना अधूरे हो गए थे। वहाँ नृत्य में चपलता नहीं, संगीत में सुर नहीं, लय ताल आरोह अवरोह सब भूलने लगे। वहाँ और भी अप्सराएं थीं, लेकिन नृत्य और संगीत की आत्मा तो जैसे उर्वशी में ही बसती थी। इंद्र के साथ बाकी देवता भी चिंता में पड़ गए। गंधर्व तो बिना आत्मा के शरीर की तरह हो गए थे। तभी उन्हें कहीं से उर्वशी की शर्त के बारे में पता लगा। उन्होंने एक खेल रचा, छल किया पुरुरवा से। नानी ने एक ठंडी सांस भरी। एक पल को अंधेरे में कुछ सोचती रहीं, फिर कहानी में लौट आईं, जैसे वो भी अपने अतीत से लौट रही हूँ। नानी ने कहा, उर्वशी ने बहुत ही सुंदर सफ़ेद फर वाले दो मेमने पाले थे। उर्वशी उनका बहुत ध्यान रखती, उन्हें हमेशा अपने साथ रखती थी। एक रात जब वो पुरुरवा के अंक में आराम कर रही थी, तभी गंधर्व ने छल से एक मेमना चुरा लिया। चोरी करते हुए उन्होंने जानबूझकर कुछ खटर पटर किया, जिससे उर्वशी की नींद उछट गई। उसने पुरुरवा को उठाया कि कोई उसका मेमना चुरा कर ले जा रहा है। वे नींद से नहीं जागे तो उर्वशी उन्हें भला बुरा कहने लगी। छल की योजना पूरी होते न देखकर उन्होंने दूसरा मेमना चुराने का साहस किया। फिर उर्वशी ने उन्हें उठाया। इस बार पुरुरवा अपने आप को रोक नहीं सके और बिस्तर से खड़े हो गए। तभी देवताओं ने बिना मौसम की आसमानी बिजली चमका दी। पल भर को उर्वशी ने पुरुरवा को और पुरुरवा ने उर्वशी को निर्वस्त्र देख लिया। शर्त टूट गई थी। उर्वशी को फिर स्वर्ग लौट जाना पड़ा। पुरुरवा अकेला रह गया, अनमना और उदास। वो बिछोह की आग में जल रहा था और उर्वशी भी जल रही थी बिछोह में।

पुरुरवा का राजकाज में मन नहीं लगता था। रह रहकर उर्वशी की याद सताती। कई महीनों बाद उर्वशी एक बार फिर पुरुरवा को किसी निर्जन झरने में स्नान करते हुए दिखी। देर तक दोनों एक दूसरे को विछोह की कहानियां सुनाते रहे। पुरुरवा के प्रेम में उर्वशी को पिघलना ही पड़ा। उसने कहा, वो स्वर्ग के नियम से बंधी है, लेकिन हर साल के आखिरी दिन उससे मिलने धरती पर ज़रूर आएगी, और वो आती रही हर साल इसी तरह एक रात के लिए। चंदा ने फिर हुंकारा भरा, अच्छा फिर क्या हुआ नानी? नानी ने आगे कहा, एक बार देव और दानों का जोरदार युद्ध हुआ, बहुत बड़ा। देवता जितनी भी कोशिश करते, दानों फिर उन्हें पीछा कर देते। ऐसे समय उन्हें धरती पर रहने वाले पुरुरवा की याद आई। पुरुरवा ने युद्ध में देवताओं की मदद की। इंद्र ने लौटते समय उर्वशी को भी उनके साथ भेजा। उर्वशी स्वर्ग से मुक्त होकर हमेशा के लिए धरती पर आ गई। फिर जिंदगी भर दोनों हमेशा साथ साथ रहे। उनके कई पुत्र हुए, फिर प्रेम की जीत हुई। स्वर्ग और धरती का मिलन हुआ हमेशा के लिए गंधमादन की पहाड़ियों पर।

नानी की कहानी तो पूरी हो गई थी, पर चंदा के भीतर बवंडर घुमड़ रहा था। वो सोच रही थी कि दुनिया की खिलाफत, नफरत और छल के बाद भी प्रेम किसी भी समय ख़त्म नहीं हुआ। कोई तो बात है कि हजारों साल के बाद भी प्रेम बार बार बचा रह जाता है। उसे लगा कि प्रेम उस अमर पंछी

0: की तरह है जिसके बारे में उसे आकाश ने बताया था, सुनहरी पूंछ वाला रंग बिरंगा फिनिक्स पक्षी। सैकड़ों साल जीता है फिनिक्स, और आखिर में वो टहनियों और लकड़ियों से अपने आसपास घोंसला बनाता है, खुद अपनी चिता बनाता है और उसी में जल जाता है। इसी राख से एक नया पक्षी जन्म लेता है। शायद प्रेम भी फिनिक्स की तरह अपनी ही राख से बार बार उगाता है, और इसी तरह उगता रहेगा प्रेम हमेशा हमेशा।
1: सुनहरी पूंछ वाला अमर पंछी, ये गीतों भरी कहानी अभी आपने सुनी। लेखक थे मनीष वैद्य, संपादक स्नेहल भिसे, वाचन स्वर ममता सिंह, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह ने की।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है।
2: आकाशवाणी मुर्शिदाबाद, বিবিধ ভারতীর অনুষ্ঠান আকাশবাণী মুম্বাই কেন্দ্র থেকে রিলে করে শোনানো হলো। আমাদের অনুষ্ঠান প্রচারিত হচ্ছে 102.2 MHz FM প্রচার তরঙ্গে। এখন রবীন্দ্রসঙ্গীতের অনুষ্ঠান

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
1: India's position on the Indus Waters Treaty.
2: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख पहले की तरह स्पष्ट है। पाकिस्तान के लगातार सीमा पार आतंकवाद को मदद देने के जवाब में सिंधु जल संधि को रोक दिया गया था। पाकिस्तान को विश्वसनीय तरीके से सीमा पार आतंकवाद को मदद देना बंद करना पड़ेगा।
0: तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं और समय समय पर उनकी समीक्षा की जाती है। वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नाविक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जाँच करने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने आज नई दिल्ली में बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि मलक्का जल डबरू मध्य की समुद्री सुरक्षा और स्थिरता में इंडोनेशिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया में रहेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों की क्षमता बढ़ाने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार सेना के लिए आकाश तरंग इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, पैदल सेना के लिए टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली, मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली, टैंकों के लिए सक्रिय सुरक्षा प्रणाली और जेट आधारित कामिकाजे ड्रोन प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। नौसेना के लिए मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, जहाज से संचालित मानव रहित हवाई प्रणाली और इलेक्ट्रिक प्रणोदन प्रणाली के परीक्षण के लिए भूमि आधारित सुविधा स्थापित करने को स्वीकृति दी गई है। वायुसेना के लिए अधिक ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भरने वाले फिक्स्ड विंग प्लेटफॉर्म और अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। 16वें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 4,35,236 करोड़ रुपए की अनुशंसा की है। ये 15वें वित्त आयोग की तुलना में लगभग 84% अधिक है। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि 16वें वित्त आयोग ने पंचायतों के लिए 80% मूल अनुदान और 20% प्रदर्शन आधारित दान प्रस्तावित किए हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की समस्याओं के आकलन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद

0: मामले की जांच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आंधी तूफान के साथ बिजली गिरने की आशंका है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डे से होगा। इससे पहले स्पेन, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड ने अंतिम 16 में प्रवेश किया। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: আকাশবাণী মুর্শিদাবাদ 102.2 MHz FM প্রচার তরঙ্গে অনুষ্ঠান শুনছেন।
2: ভারতে সার্ভাইকাল বা জরায়ু মুখের ক্যান্সার মহিলাদের দ্বিতীয় প্রধান ক্যান্সার। সার্ভাইকাল ক্যান্সার প্রতিরোধে আপনার পরিবারের 14 বছর বয়সের কিশোরীদের HPV টিকা দিন। এই টিকা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা WHO দ্বারা অনুমোদিত এবং সম্পূর্ণ নিরাপদ ও কার্যকরী। এই টিকা আপনার নিকটবর্তী সরকারি মেডিকেল কলেজ, জেলা হাসপাতাল, ব্লক ও পৌর স্বাস্থ্য কেন্দ্রে এখন বিনামূল্যে পাওয়া যাচ্ছে। বিশদে জানতে সরকারি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যোগাযোগ করুন বা www.in.mohfw.gov.in এই ওয়েবসাইটটি ভিজিট করুন। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার দ্বারা জনস্বার্থে প্রচারিত।
1: শুরু হলো লোকগীতির অনুষ্ঠান।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: বিচারপতি চন্দ 14 জুলাই সার্কিট বেঞ্চে আসার পর এই মামলার শুনানি গ্রহণ করবেন। এদিকে অভিষেকের আপ্তসহায়ক সুমিত রায়ের আগাম জামিনের আবেদনেরও আজ শুনানি হয়নি। বিচারপতি জয় সেনগুপ্তর বেঞ্চে গত 25 জুন মামলার শুনানি হয়, কিন্তু বিচারপতি অসুস্থ থাকায় আজ শুনানি হয়নি। শ্রীরামপুরে রামনবমীর মিছিলে হামলার ঘটনায় এনআইএ আদালতে শর্ত সাপেক্ষে জামিন পেয়েছেন অপরূপা পোদ্দারের স্বামী শাকির আলী। উত্তর পশ্চিম বঙ্গোপসাগর ও সংলগ্ন উত্তর ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গ উপকূলে সৃষ্ট নিম্নচাপ অঞ্চলের কারণে দক্ষিণবঙ্গের বেশিরভাগ জেলাতেই আজ থেকে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। উপকূলবর্তী পূর্ব মেদিনীপুর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলায় ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় আগামীকাল থেকে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে। স্থানীয় সংবাদ শেষ হলো, পরের খবর 8:10।
1: রণধীর জয়সওয়াল ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
2: India's position on the Indus Waters Treaty.
3: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख पहले की तरह स्पष्ट है। पाकिस्तान के लगातार सीमा पार आतंकवाद को मदद देने के जवाब में सिंधु जल संधि को रोक दिया गया था। पाकिस्तान को विश्वसनीय तरीके से सीमा पार आतंकवाद को मदद देना बंद करना पड़ेगा।
1: तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं और समय समय पर उनकी समीक्षा की जाती है। वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नाविक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के समक्ष उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जाँच करने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया में रहेंगे। मेलबर्न में श्री मोदी भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। श्री मोदी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों की क्षमता बढ़ाने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार सेना के लिए आकाश तरंग इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, पैदल सेना के लिए टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली, मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली, टैंकों के लिए सक्रिय सुरक्षा प्रणाली और जेट आधारित कामिकाजे ड्रोन प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। नौसेना के लिए मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, जहाज से संचालित मानव रहित हवाई प्रणाली और इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम के परीक्षण के लिए भूमि आधारित सुविधा स्थापित करने को स्वीकृति दी गई है। वायुसेना के लिए अधिक ऊंचाई पर लंबे समय तक उड़ान भरने वाले फिक्स्ड विंग प्लेटफॉर्म और अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। 16वें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 4,35,236 करोड़ रुपए की अनुशंसा की है। ये 15वें वित्त आयोग की तुलना में लगभग 84% अधिक है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की समस्याओं के आकलन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत एक उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्देश दिया है। श्री चौहान ने कहा कि तोतापुरी आम उत्पादकों की आय और आजीविका की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है। किसानों ने बताया कि कीमतों में लगातार गिरावट ने उनकी आय पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 262 अंक बढ़कर 77,764 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 95 अंक की बढ़त के साथ 24,271 दर्ज हुआ। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आंधी तूफान के साथ बिजली गिरने की आशंका है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना और केप वर्डे आमने सामने होंगे। इससे पहले स्पेन, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड

ये विविध भारती है और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। तो अगला गीत है आपके लिए मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन। फिल्म का नाम है मेरे हुजूर।

कार्यक्रम का अगला गीत है महेंद्र कपूर की आवाज में, गीतकार हैं साहिर लुधियानवी, धुन है रवि की, फिल्म का नाम है हमराज़।

कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीत लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत है शंकर जय किशन का, फिल्म का नाम है लाल पत्थर।

साथियों, कार्यक्रम आपके लिए अब समाप्त होता है। सलमा सैयद को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार

0: ओपी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओपी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता, आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: पेश प्रोग्राम आज के फनकार।
1: ये कार्यक्रम केंद्रित है फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने जानी राजकुमार पर।

0: गए।
1: राजकुमार यानी कुलभूषण पंडित। राजकुमार फिल्मों में आने से पहले मुंबई पुलिस में इंस्पेक्टर थे। उस जमाने में ये ओहदा अपनी आन बान के साथ सुसज्जित करने के बाद उसी चाल से वो फिल्म इंडस्ट्री में आए। अपनी अनोखी अदाकारी और ख़ास शैली के डायलॉग डिलीवरी से अपना एक मुकाम बनाया और उसे जिस बुलंदी पर पहुंचाया, उसे छुपाना फिर किसी और की बस की बात नहीं रही। शुरुआत तो कोई धमाकेदार नहीं हुई, मगर रंगीली में उन्हें पहला मेजर ब्रेक मिला। वर्ष था 1952। उनकी नायिका थी रेहाना। आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं मर्यादा फिल्म का ये गाना जो बनी थी 1971 में।
2: कहते हैं हर दयार में आती है फिर बहार, खिलते हैं फूल भी वहां दौरे खिजां के बाद।

राजकुमार एक ऐसे अदाकार थे जिन्होंने हर भूमिका को सजीव कर दिया है, वो फिर मदर इंडिया का मजबूर किसान हो या दिल एक मंदिर का कैंसर ग्रसित मरीज हो। जिस भूमिका को कुछ भी स्कोप नहीं होता, उसमें भी वो अपनी अदाकारी व लाजवाब संवादों की अदायगी से जैसे रंग भर देते।

राजकुमार देखने में एक साधारण व्यक्तित्व के मालिक थे। न हीरो जैसा रंग रूप था उनका, पर फिर भी अपनी बेमिसाल अदाकारी और डायलॉग डिलीवरी से उन्होंने वो मुकाम

हम हासिल किया जिसे पाने में हर कोई सफल नहीं होता। फूल बने अंगारे इस फिल्म में वो फौजी बने हैं। इस फिल्म के गाने भी काफ़ी पॉपुलर हुए हैं और उन्हें पर्दे पर गाया है राजकुमार ने। गाने का रोमानी अंदाज और राजकुमार की पुरकैफ अदायगी से जैसे चार चांद लग गए हैं।

1959 में उनकी 3 फिल्में आई थीं, उजाला, अर्धांगनी और शरारत। और भी कई फिल्में आती रही थीं, जैसे 1960 में दिल अपना और प्रीत पराई, दिल एक मंदिर और काजल।

0: राजकुमार अपने असली रंग में आए 1965 में बीआर फिल्म्स की प्रस्तुति मल्टी स्टारर फिल्म वक्त में। निर्देशक थे यश चोपड़ा। वास्तव में इसी फिल्म से लोगों को उनकी अनोखी संवाद अदायगी के दर्शन हुए।
1: माल आखिर खरीदार के पास ही जाता है चिनॉय सेठ।
2: माल क्या लाए?
1: आज फिर अपने आप को बेचने आया हूं।
2: ओ, कीमत?
1: चिनॉय सेठ रवि मेरा भाई है।
2: तुम्हारा भाई?
1: सगा भाई।
2: यह रात कब मालूम हुआ? तो
1: मंगनी से एक दिन पहले। उस रात जब मैं गुस्से में रवि की जान लेने की नियत से गया था, और आज आज वो सब

0: खुशियां लुट गईं। मीना और रवि की मंगनी टूट गई। रवि घर छोड़कर चला गया। मित्तल रवि के बाप का नाम जानना चाहता है और वो नाम सिर्फ मैं बता सकता हूं।
1: फिर बताते क्यों नहीं?
0: इसलिए कि मेरा एक माजी है और वो माजी सिर्फ एक आदमी जानता है।
2: और वो आदमी मैं।
0: हाँ, सौदा ये है चिनॉय सेठ कि मैं अपनी आत्मा आपके हाथ बेचता हूं। जिंदगी भर आपका गुलाम रहूंगा, जो कहेंगे आप वही करूंगा। और आप अपनी जबान बंद रखेंगे ताकि मेरे गुनाहों का साया रवि के आने वाली जिंदगी पर न पड़े।

बीआर फिल्म्स के साथ उनका रिश्ता इस प्रोडक्शंस की अगली फिल्म हमराज में भी रहा, जो आई थी 1967 में। इस फिल्म का उन पर फिल्माया गया ये गाना आज भी उतना ही पॉपुलर है।

एक साल बाद यानी 1968 में सुप्रसिद्ध उपन्यासकार गुलशन नंदा के उपन्यास पर आधारित फिल्म नीलकमल में एक पेचीदा रोल उन्हें मिला। उस रोल को भी उन्होंने अपनी अद्भुत अभिनय क्षमता से ऐसा साकार किया कि बयान करना मुश्किल।

1970 में आई फिल्म हीर रांझा अपने तरह की एक अद्भुत फिल्म है, जिसका हर किरदार डायलॉग पोएट्री के रूप में बोलता है। फिर भी कहीं पर भी नाटकीयता नजर नहीं आती। ये चेतन आनंद के निर्देशन का तो कमाल था ही, पर मेन रोल कर रहे फिल्म के रांझा यानी राजकुमार की एक्टिंग का भी लोहा हर एक को मानना ही पड़ा है।

1972 में फतेहपुर शीखरी के बैकग्राउंड पर एक ऐतिहासिक लगने वाली फिल्म बनी थी लाल पत्थर। वो भी एक जीता जागता नमूना है राजकुमार की अदाकारी का।

इसी साल यानी 1972 में रिलीज हुई थी कमाल अमरोही की यादगार फिल्म पाकीजा। हर दृष्टि से संपन्न ये फिल्म भी एक दस्तावेज है। कमाल अमरोही के कमाल के डायलॉग राजकुमार ने बाकमाल तरीके से कहे हैं कि भुलाए नहीं बनते। आपके पांव देखे बहुत हसीन हैं, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे।

0: भारतीय हवाबाजों पर चेतन आनंद ने एक फिल्म बनाई थी हिंदुस्तान की कसम। इसमें राजकुमार अपने जख्मी साथी जवान को देखकर यह ऐलान फरमाते हैं, इस जवान की कसम जवाब देने आऊंगा हिंदुस्तान की कसम।
1: हर तरफ अब यही अफसाने हैं।

0: राजकुमार एक रहम दिल मगर मुंहफट अखड़ मिजाज अव्वल दर्जे के फनकार थे जो पब्लिसिटी से हमेशा दूर रहे। फिल्मी आडंबर उन्हें नहीं सुहाता था।
1: इतनी

0: इस कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए अशोक को इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।